है, और भी बहुत सारी मिसालें हैं, सिर्फ सामने की चीज़ें पेश कर रहे हैं। जितनी जिस्म की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा इंसान उसको अंजाम देता है। उसके मुकाबले में नफ्स को बेहतर बनाने के लिए जो इंसान जिस्म की सफाई के लिए रोज़ नहाता है और दिन में कई मरतबा हाथ मुंह वगैरह धोता है, वो नफ्स की सफाई के लिए क्या करता है रोज़ाना, कभी सोचा है? जिस्म के लिए इस बात का ख्याल रहता है हमको, हर इंसान ये ख्याल रखता है कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। कब हमने नफ्स के लिए सोचा है? बल्कि उल्टा है, नफ्स के लिए कोई अगर कहे भी तो बिगड़ जाते हैं। उमूमन लोग, सब तो नहीं, बाज़ लोग हैं कि जो कहते हैं हाँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने, वरना अगर किसी से कह दीजिए कि आप में फलां प्रॉब्लम है, आप कौन होते हैं बताने वाले? आप में तो खुद देखिए, आप जो होगी और जो नहीं होगी सब गिना डालेंगे आपको। ये ज़माने की हकीकत है, यकीनन मोमिनीन को ऐसे नहीं होना चाहिए और इंशाल्लाह होंगे भी नहीं। तक़वे का काम है नफ्स को सुधारना। अलबत्ता तक़वे से जिस्म बाहर नहीं है, जिस्म भी शामिल है, जिस्म की पाकीज़गी भी तक़वे का हिस्सा है। लेकिन जब तक़वा आता है तो ये जो जिस्म के लिए हम ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करते हैं उसको तक़वा कम करेगा, और जो हम नफ्स को फरामोश कर रहे हैं, भूल रहे हैं, उसको तक़वा याद दिलाएगा। ये तक़वे का काम है। नफ्स आलूदगियों से महफूज रहेगा, नफ्स की पाकीज़गी होती रहेगी, नफ्स की सफाई होती रहेगी। नफ्स खुद, जिस्म का काम क्या है? नमू, नमू समझते हैं बढ़ना। अगर किसी का जिस्म, अलबत्ता एक एज के बाद फिर नहीं बढ़ता है, लेकिन बचपने से ले कर बढ़ता है, अगर उसमें नमू ना हो, बढ़े ना जिस्म, तो बीमार है। बच्चा पैदा हुआ, जिस तरीके से उसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका मसलन हाइट उसकी बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, बहुत सी चीज़ें डॉक्टर्स चेक भी करते हैं। नफ्स में भी नमू होना चाहिए। नफ्स हाइट और वेट और इन चीज़ों के एतबार से नहीं बढ़ता है, क्वालिटी के एतबार से बढ़ता है। अगर बच्चा कुछ महीने या एकाध साल नहीं बढ़े तो फिक्र हो जाती है, ये डॉक्टर वो डॉक्टर फला फला। नफ्स नहीं बढ़े तो क्या होता है मालूम ही नहीं होता, क्योंकि जिस्म को चेक कराया जाता है, नफ्स को कौन चेक कराता है? अइम्मा के ज़माने में लोगों की रविश थी, अलबत्ता बाद में भी आज भी ऐसे लोग हैं जो उलमा के पास जाते हैं और जाके अपने मजहबी हालात को बयान करके पूछते थे कि कोई इसमें कमी तो नहीं है, कोई तब्दीली तो नहीं हो गई। ये वो लोग थे कि जो प्रॉपर और सही जगह से दीन को हासिल करते थे, इसलिए पूछते थे, चूँकि ज़माना गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर तब्दीली हो जाती है, इस हकीकत को इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो जाके पूछते थे कि ऐसा नहीं कोई ऐसी तब्दीली, ठीक है पिछले साल हम आए थे और सब चेक कराए थे, एकदम परफेक्ट था, ठीक था सब, लेकिन इस एक साल के बीच में कहीं अनजाने में गलती से कोई तब्दीली ऐसी तो नहीं हो गई है कि जो हमारे नफ्स को किरदार को नुकसान पहुंचा? आज कितने मोमिनीन में ऐसे होते थे, आज भी बाज़ हैं, कितने लोग हैं ऐसे, किसको इस बात की फिक्र? और अब तो मेडिकल साइंस ने मशवरा दिया है ना कि हर साल आके पूरा बॉडी चेकअप कीजिए कहीं कुछ है तो नहीं, और वो समझ में आ गया, अच्छे खासे लोग कराते हैं, वो समझ में आ गया। बुनियादी चीज़, इस बात बड़ी हो गई, इस पर इतनी गुफ्तगू की जरूरत नहीं थी, बुनियादी चीज़ आपकी खिदमत में आकर के इस बात को ख़त्म करें कि बेसिक एतबार से हमारी फिक्र में अगर मादियात गालिब होगी तो हम जिस्म का ज़्यादा ख्याल रखेंगे और नफ्स को भूल जाएंगे, और अगर मादियात गालिब नहीं होगी, नॉर्मल और बैलेंस ज़िंदगी होगी, तो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर हम दोनों को बैलेंस करके चलेंगे। चूंकि मादियात गालिब होती है लिहाजा हमारे यहाँ हर चीज़ का महवर जिस्म, पैसा, दौलत, मकाम, फलां फलां, ये सारी चीज़ें उसी की बेस पे सब तोला जाता है, ये प्रॉब्लम। ये एक शक्ल है और एक शिख है कि जिसका ताल्लुक तक़वे इलाही से है। आइए इसके बाद अमीरुल मोमिनीन मौलाए मुत्तकियान

जब सीने पे सवार हुए उसने तौहीन की अमीरुल मोमिनीन की, नाज़ेबा अल्फाज के। अब बताइए अमीरुल मोमिनीन को क्या करना चाहिए हम लोगों के जहन से, भी तो वाकई हमारी निगाह के सामने है, लिहाजा हम लोग पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं और आगे निकल जाते हैं। मौला को क्या करना चाहिए था भाई, सारा काम तो दीन के लिए है, जंग पूरी दीन के लिए है, क्या मुश्किल क्या है इसमें, सर को कलम कर लेते, वो भी ऐसा।

इसे काबू में नहीं आता बकौल दुनिया के, अमीरुल मोमिनीन के लिए नहीं। अभी सीने पे सवार हो गए हैं, अभी तो गला काटना चाहिए, अब हाथ में आ गया खत्म। इसमें कहां से नफ्स शामिल हो रहा है? लगता है कहीं से नफ्स शामिल होता हुआ इसमें, लेकिन अमीरुल मोमिनीन सीने पे से उतर गए। यह है दो हलाल के बीच की जंग। अगर उसके सर को कलम कर लेते तो कोई हराम काम नहीं था, मकरूह नहीं था, जिहाद था, अल्लाह की राह में जिहाद था, इससे बेहतर मकाम क्या था। लेकिन चूंकि यहां पे एक कैफियत पैदा हो गई थी कि जिसमें अपने नफ्स के शामिल होने का शायबा था, लिहाजा इससे बेहतर वो कंडीशन है कि जब हम इस हालत से बाहर निकला। आसान है कि उसको छोड़ दिया, सीने से उतर गए। जाहिर से उतरने का मतलब यह कि अब जंग फिर कहीं से वहीं से हो सकता शुरू हो। इतने सारे अब कल तो हम लोग थोड़ी सी आसानी के लिए छोड़ो भी कौन इतना, मैदान जंग में दुश्मन की तलवार के सामने भी अमीरुल मोमिनीन ने इस जहर से देखे ना, हम लोग नारे और वाहवाही तो बहरहाल है, ठीक है, मोमिन को खुश भी होना चाहिए, लेकिन इतना खुश ना हो जाए कि दर्स भूल जाए, जो उससे पैगाम मिल रहा है वो भूल जाए। मैदान जंग में इस कीमत पे भी अमीरुल मोमिनीन ने क्या किया, बेहतर कंडीशन को अपनाया। कितने लोग थे वहां जिन्होंने समझा? अच्छा, बल्कि रवायात में लोगों ने इतराज़ किया, या रसूलुल्लाह देखिए इतना सख्त दुश्मन था और काबू पाके। इतराज़ करने वाले तो हर जमाने में थे, अमीर मोमिनीन से दुश्मन बल्कि खुद रसूल पे इतराज़ करने वाले थे, और इमाम अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने तक ऐसे अफराद थे कि जो इमा पे आके इतराज़ करते थे, ऐसा क्यों किया, वो क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, ये क्यों पहना, ये इस तरह के इतराज़ात होते थे। इतराज़ किया लोगों ने, वो काम अमीर अल-मोमिनीन का कि जो नफ्स की बुलंदी की बुनियाद पे या नफ्स की बुलंदी के लिए था, उस काम पे आके लोगों ने इतराज किया। क्यों नहीं, क्यों किया, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे। ये मोमिन के लिए, यहां से मोमिन का अपने नफ्स का जिहाद शुरू होता है। आइए एक आध आयत को पढ़ें और पैर आज फिर वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आगे अल्लाह तौफीक दी तो इस बात को कंटिन्यू करेंगे। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, सूरह नाज़ियात की दो आयतें हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बे, और जिसने अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा किया। मकाम रब्बे, अल्लाह के मकाम का खौफ। खूब दोनों तरह का खौफ है, एक तो ये खौफ हम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह की खिदमत में, अल्लाह की बारगाह में रोज़े महशर हाजिर होना है, हिसाब देना है। एक ये खौफ कि जो कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह देख रहा है, हम अल्लाह के बारगाह में हैं, हाजिर हैं। अच्छा तो नहीं कभी हम यहाँ पे हैं, हम लोग छत होते हैं, सब कुछ है, तो अल्लाह नहीं देख रहा? अल्लाह तो देख रहा है। तो जिसने भी अपने अंदर मकाम रब का, अल्लाह के मकाम का खौफ पैदा किया, वहाँ नफ्सा अनिल हवा, और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोका। कुरान की आयत है, कुरान की गारंटी है, हमारा कितना कुरान पे ईमान है, ये जाहिर सी बात है कि ईमान की बुनियाद पे अमल होता है। अमल में ये चेक करना होगा कि ईमान कितना है। जिसने भी अल्लाह का खौफ पैदा किया और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोका, फ़इन्नल जन्नत हिया मावा, तो जन्नत उसके लिए ठिकाना है, उसका मरकज है। जन्नत के पीछे तो हर आदमी, अगर अच्छी ये बात अंदाज किया कि मोमिनीन का मकसद जन्नत नहीं है, अल्लाह की मर्जी। रिजवानु मिन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रिजवानु मिन अल्लाह अकबर, अल्लाह की रजा कायनात की सबसे बड़ी चीज है। मोमिन का मकसद इबादात में भी नियत क्या करेंगे नमाज में, क़ुर्बतन इलल्लाह। तो मोमिन का असल मकसद ये, जन्नत तो मिल जाएगी, जन्नत। अभी अय्यामे अज़ा आ रहे हैं, बहरहाल बहुत सी चीज़ें इस्लाह भी होंगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन जन्नत के परवाने भी बटेंगे। जन्नत वाजिब और जन्नत ये और जन्नत, कुरान बताता है जन्नत का मेयार, कुरान से पूछें जन्नत। हमारी आपकी मिल्कियत थोड़ी जन्नत की, जिसको दिल चाहे दे दिया, जिसको दिल चाहे नहीं दिया, जिससे दोस्ती है उसको दे दिया और जिससे झगड़ा हो गया उसको छोड़ दिया। मेयार कुरान बताता है, कुरान कह रहा है
اللہ کا خوف ہو ایک، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکو تو تمہارا مرکز جنت ہے.

पायमाल हालत में देखा था और दफन किया है, उनसे ज़्यादा हमको थोड़ी फिक्र हो। जिस जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने भाई के लाशे को रेगजारे गर्म पे देखा, मख्तल में देखा, उससे ज़्यादा थोड़ी हमको फिक्र होगी। उनसे बेहतर तो हम क्वालिटी नहीं पैदा कर सकते। बेहतरीन आज़ादारी वो है कि जिसको अइमा ने हमारे सामने पेश किया, उनकी तासी, उनके नक्श कदम पे चले। अगर कोई चीज़ें शामिल हो रही हैं तो दो ऑप्शन है, एक इमाम का दिया हुआ, एक गैरों का दिया हुआ। गैरों के दिए हुए को लेना इस बात की दलील है कि तुम उनको इमाम से अफजल समझते हो। फैसला करो ना कि कौन इस लायक है जिसकी तासी, और फिर इमाम को इमाम कहना छोड़ दो, इसलिए कि तुम इमाम इनको कह रहे हो, फॉलो उनको कह रहे हो, जिसको फॉलो कर रहे हो वही तुम्हारा इमाम। तीन अहम चीज़ें हैं आज़ादारी में। जब भी कोई मजलिस, आज़ादारी का असल जो हिस्सा है वो मजलिस है, मजलिस बरपा होती है, तीन ग्रोह हैं। एक ज़ाकिरीन का ग्रोह जो मजलिस पढ़ते हैं, एक सामईन जो सुनने वाले, और एक मुंतज़मीन जो ऑर्गेनाइज़र हैं, इंतज़ाम करने वाले। खूब ज़ाकिरीन पे बात होती रहती है, बेहतर यही है कि उनके हलके में हो, और अल्हम्दुलिल्लाह भी अय्याम ऐसा शुरू होने वाले हैं, बुजुर्ग उलमा की तरफ से बयानात आ रहे हैं, आ भी गए, इंशाल्लाह आएंगे भी। ज़ाकिरीन की अपनी ज़िम्मेदारी है, क़ुरान मजीद मुबल्लिग, ज़ाकिर यानी मुबल्लिग है ना, हमारे यहाँ वो ज़ाकिर की इस्तेलाह अलग है। ज़ाकिर वो कि जो हमको याद दिलाए, आके मिंबर से एक ऐसी शक्ल पेश करे कि हमको अहले बैत याद आ जाए, हमको अल्लाह याद आ जाए, हमको रसूल याद आ जाए। खूब इसको कहते हैं ज़ाकिर, एक किरदार को पेश करे, एक शक्ल को पेश करे। क़ुरान मजीद ने मियार बताया मुबल्लिग का, वो लोग कि जो रिसालात इलाहिया की तबलीग करते हैं वो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। तो सबसे बुनियादी शर्त यह है कि आलिम या ज़ाकिर जो भी मेंबर, वो किसी से डरे नहीं। और दूसरी चीज़ बताई, उनके हिसाब के लिए अल्लाह काफ़ी, लिहाजा किसी भी तरह के किसी हिसाब के लिए वो किसी और पे नज़र न रखे। खूब ये इतनी यहाँ पे गुफ्तगू होती भी रहती है। दूसरा मामला आता है सामेईन का, सुनने वाले, उसमें तो सभी हैं, हम सब हैं, अभी बहुत से मजलिस सुनते हैं, और अल्लाह तौफीक दे कि फर्श अज़ा पे बैठे इस सआदत को हासिल करें, सुन के इल्म बढ़ता है। सामईन का भी अपना एक मेयार होना चाहिए, यानी कि जो कुछ भी मेंबर से कह दिया गया सबको एक्सेप्ट कर लिया। आप अपने 5 साल 10 साल के बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तो देखते हैं कि अगर ऑप्शन है तो कौन सा अच्छा स्कूल। ये मजलिस दीन का स्कूल है, दरसगाह। आप देखें कि कौन सा अच्छा ज़ाकिर है कि जो आपके बच्चे को या आपको बेहतरीन दीन दे सकता है। जिम्मेदारी आपकी, अफजल को छोड़ के कोई अकलमंद मफजूल की तरफ नहीं जाता है, इंतखाब करें। जाने के बाद अगर कोई चीज़ समझ में आती है तो उसको नोट बना के, पॉइंट्स बना के रख लें, क्योंकि वो ज़िंदगी के लिए बहुत कीमती है। नहीं समझ में आती तो जाके हतमन सवाल करें, सवाल करना आपका हक है, जवाब देना पढ़ने वाले की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आया ही इसीलिए है कि आपको मुतमईन करें। गलत चीज़ अगर है और आपने एक वाह सुभान अल्लाह से उसकी ताईद कर दी, तो जब रोज़े महशर वो बोलने वाला उस गलत चीज़ का हिसाब देगा तो आपको भी खड़े होकर देना पड़ेगा, क्योंकि उसने तो ऊपर से बताया, नीचे से तुमने वाह कह के बाकी लोगों के लिए ताईद कर दी कि हाँ ये बहुत परफेक्ट चीज़ है। मजलिसों का इंतखाब कान के जायके की बुनियाद पर ना करें, अक्ल व शऊर की बुनियाद पर करें कि वो कौन सी चीज़ है कि जो हमारे करबला इनकलाब का नाम है। ऐसी मजलिसें सुने कि जो आपके नफ्स में इनकलाब

0: कभी कभी सब कुछ एक जुमले से शुरू होता है, एक ट्वीट, चंद अल्फाज, और अचानक दुनिया जंग का अंदाजा लगाने लगती है। स्क्रीन के ऊपर खबरें कुछ और हो रही होती हैं, लोग तहलील कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जंग शुरू होने वाली है, लेकिन हकीकत मॉनिटर्स में नहीं होती। कहानी को समझने के लिए हमें उस जगह जाना होता है। हम जुनूब गए, बंदर अब्बास गए, ताकि अपनी आंखों से देखें कि वहाँ का क्या मंजर है। हम एक शहर देखने आए थे जिसके बारे में सब बात कर रहे थे, ऐसा शहर जो हमेशा खबरों में था, जिसके लिए लोग धमकियां दे रहे थे, स्ट्रेट की बात कर रहे थे, लेकिन बंदर अब्बास उन तसव्वुर की तस्वीरों जैसा नहीं था, बिल्कुल अलग था। यहाँ लोग काम पर जा रहे थे, बाजार भरे हुए थे, मोटरसाइकिल और हॉर्न्स की आवाज़ खबरों से ज़्यादा बुलंद थी और ज़िंदगी बगैर रुके चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि बंदर अब्बास के लोगों ने सालों में ये सीख लिया है कि क्राइसिस के साए में भी नॉर्मल ज़िंदगी कैसे चल सकती है। सब इख्तिलाफ की बात कर रहे थे, जंग के बारे में, सरहद के बारे में, नए झगड़े और नए तनाजात के बारे में, लेकिन यहाँ कुछ और ही नज़र आ रहा था। लोग एक दूसरे के साथ कुछ और ही तरीके से रहते हैं। यहाँ शिया और सुन्नी सियासी एनालिसिस का मौजू नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, ख़ानदान हैं। वहदत और यूनिटी यहाँ पर सिर्फ एक बैनर पर लिखा हुआ नारा नहीं था, यहाँ उन लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा था, जिन्होंने सालों से समंदर के किनारे मुश्किलात के साथ एक दूसरे के साथ रहना सीख लिया।
1: شهدایی داریم که به خاطر 8 سال جنگ تحمیلی جان دادن و برای که از کشور خودشون رفتن دفاع کردن.
2: هم لوگ چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں جو بھی ہم لوگ ہوں ہم سب لوگ مل کے ایران کے ذرے ذرے کے لیے ہمارے دلوں میں محبت ہے اور ہم لوگ چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو ہم لوگ ہمیشہ چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ جانتے ہوں گے کہ جس طریقے سے جب عراق نے حملہ کیا تھا اور جنگ ہوئی تھی اس کے اندر زاہدان سے جنوب سے بندر عباس سے ہر جگہ سے ایران میں اہل سنت کے کئی شہید تھے جنہوں نے یہ جنگ میں دفاع کیا اور اپنے وطن کے لیے اپنی جان دی اور ہم لوگ آمادہ ہیں اسی طریقے

0: तरीके से अपने वतन के दिफा को कि अभी पिछले ही हफ्ते में जैसा खुशी और गम में हम साथ में रहते हैं, तो यहीं पर एक तशिया जनाजा हुआ था, तदफीन का था, तो वहाँ पर जो खानुम थी वो उनकी शादी अहले सुन्नत के यहाँ हुई थी, जिनके यहाँ फौत हुआ था, जो इस दुनिया से गुजरे थे। तो कह रहे हैं इसी तरीके से एक शेख अहमद अलीज़ादे साहब जो हैं, उन्होंने भी इसी तरीके से कोशिश की कि हमेशा यहाँ पर वहदत और मुस्लिम यूनिटी और आपस में एक दूसरे के दिल जुड़े रहें, इसके लिए कोशिश करते रहें। पर्शियन गल्फ़ की सरहदें हमेशा इतनी वाज़े और सख्त नहीं थीं। यहाँ की हवा, यहाँ का कल्चर लोगों को अपने साथ समेटे हुए था। समंदर लोगों को एक दूसरे के करीब ले आया था और बंदरगाह सालों तक मुख्तलिफ दुनिया के लोगों को एक जगह जमा कर रहा था। यहाँ बंदर अब्बास के दिल में हिंदू मंदिर सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, ये शहर की एक निशानी है जिसने ये सीख लिया है कि लोग मुख्तलिफ भी हों तो कैसे साथ में प्यार मोहब्बत से रह सकते हैं। मस्जिद से लेके मंदिर तक, मजलिस से लेके बाजार तक, ऐसा लग रहा था जैसे पर्शियन गल्फ ये सिखा रहा है कि एक दूसरे के साथ कैसे मिल के रहा जाए, ना कि लड़के रहा जाए।
1: हम लोग इस वक्त बंदर अब्बास में हैं और हम लोग यहाँ पर एक मंदिर है विष्णु टेम्पल के नाम से, 1892 में ये मंदिर बनाया गया था। हम लोग यहाँ ये मंदिर देखने आए हैं। ये मंदिर में जो इसका मेक है, कहा जाता है इसका डोम जो है, वो डोम इस खास तौर से बनाया गया है जहाँ पर इरेनियन आर्ट और इरेनियन आर्किटेक्चर और इंडियन आर्किटेक्चर को मिक्स करके बनाया गया है।
0: जब जंग का नाम आता है तो कुछ लोग सिर्फ भागने के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसके बरखिलाफ हक की तरफ गामजन रहते हैं। उन दिनों जब पर्शियन गल्फ में बेचैनी और इज़्तिराब था, कुछ लोग दूसरे शहरों से, हत्ता ईरान के बाहर से इस नुक्ते तक पहुंच गए ताकि वो देखें, न सिर्फ देखें बल्कि अपने आप को वहां महसूस कर सकें। मजलिस व मातम बहुत से लोगों के लिए सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये एक पनाहगाह होती है, ये एक मरकज़ होता है, ऐसी जगह जहां लोग उनके साथ खड़े होते हैं, जो महसूस करते हैं कि उनकी किस्मत एक जैसी है।
2: तो ये कि आज बुजुर्ग तरीन बोंगाई के दानिश जोहर आज बम्बई पे, ईरान में, बम्बई पे, लंदन में फेरस्ता था। ये कि बुजुर्ग तरीन अल्हम्दुलिल्लाह दरसी ने 25 साल अल्हम्दुलिल्लाह खुदा कुमार कर दे उमर जा रसी दे बाद अज उन तकरीबन 8-9 साल लंदन बुदम तो बाद अज उन उमदम इंजा अलान ईरान हस्ता तो रसाने कार में कुनें कर है रसाने अंजाम की दम तो इंस्टाग्राम तो यूट्यूब तो फेसबुक हो ना व बरे कार कुदर बुजुर्ग साल हो ना अंजाम की दम खूब सवाल ही नस के चेरा मन जिंदगी लंदन पर बेल कर दम वो मदम ईरान वो इंजा दर्श को खाना।
0: जितना ज़्यादा खबरें आ रही थी, बंदर अब्बास की गलियां भी उतनी ही ज़्यादा भर रही थीं। लोग सिर्फ वाकईयत को देखने नहीं आए थे, लोग सिर्फ हकीकत को देखने नहीं आए थे, कुछ लोग सपोर्ट के लिए आए थे, कुछ फ़िक्र के लिए, कुछ सिर्फ ये चाहते थे कि साथ साथ रहें। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा था वो खौफ नहीं था, वो वजूद था। ऐसा शहर जो बेचैन भी हो सकता था लेकिन उसने इस्तेकामत दिखाई, वो खड़ा रहा और अपने आप को मंजर से हटाया। कुछ जगह ऐसी ही होती हैं जहां कैमरे को देर से समझ में आता है कि उसे धीमे धीमे चलना चाहिए। गुलजारे शोहदा ऐसी ही जगह है। यहां कोई ताजी खबर नहीं ढूंढता, ना कोई एनालिसिस करता है, ना कोई नारा लगाता है। सिर्फ फैमिलीज होती हैं जिन्होंने किसी अपने को खो दिया है और शहर अभी तक कोशिश कर रहा है कि उनकी गैर मौजूदगी के साथ जी सके। सारे नामों के बीच कुछ कहानियाँ जहन में ज़्यादा रह जाती हैं, जैसे मकान आसरी कि उस स्कूल में बम गिरने के बाद इस बच्चे का कोई हिस्सा नहीं मिला सिवाय एक जूते के। इनके वालिदैन अभी भी रोज़ आते हैं तलाश में कि काश मेरे बच्चे के जिस्म का कोई एक हिस्सा मिल जाए। जैसे शहीद बारानी, जिस दिन हम लोग पहुँचे उसी दिन

0: इस बच्चे की यौम विलादत यानी बर्थडे था। मैं ये सोच रहा था कि इनके वालिदैन आज उनके दिल पे क्या गुजरी होगी जब उन्हें याद आया होगा कि आज मेरे बच्चे की विलादत का दिन है और मेरा बच्चा मेरे बीच में नहीं है। कुछ ऐसे गम होते हैं जो रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते। गुलजार शहदा का माहौल इतना सख्त था कि बहुत से लोगों ने सोचा कि यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कि नस्ल जो यहाँ पढ़ रही है उसने ईरान इराक जंग नहीं देखी, ना अलार्म की आवाज़ सुनी, ना बंकर की रातें। बहुत से लोगों के लिए जंग सिर्फ एक चीज़ थी जो किताबों में थी, डॉक्यूमेंट्रीज में थी या वालिदैन की कहानियों में। लेकिन इन दिनों पहली बार कुछ चीज़ सिर्फ कहानियाँ नहीं रही, अब धमकियाँ सिर्फ धमकियाँ नहीं रहीं। खबरें ज़्यादा हकीकी लगने लगी थीं और लोग अब समझ रहे थे कि क्यों सालों से कुछ नारे इस मुल्क में लगाए जाते हैं।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग एक शहीद के घर पे आए हैं, जो मीनाब में बच्चे शहीद हुए हैं उनमें से एक बच्चे के घर पे आए हैं वालिदैन से मिलने के लिए। और ये हमारे अहले सुन्नत बरादरी से है, यहाँ फ़र्क नहीं है शिया सुन्नी का। मीनाब में अहले सुन्नत बच्चे भी थे, उनके वालिदैन से मिलने आए हैं, उनको उनके लिए एक हदिया और एक तोहफ़ा लेके आए हैं और उनके लिए दुआगू हैं। आप भी दुआ कीजिएगा, उनके वालिदैन से बात करें।
0: जंग जंग जंग जंग जंग तब हकीकी हो जाती है जब वो घर तक पहुंच जाती है। उससे पहले तक सब कुछ खबर लगती है, लेकिन यहाँ इस घर में अब कुछ भी खबर जैसा नहीं है। मोहम्मद ताहा उन्हीं नौजवानों में से एक था जिसकी ज़िंदगी आम सी थी। हिंदी फिल्में पसंद करता था, सलमान खान को पसंद करता था, हंसता था, खेलता था और अपने नस्ल के बहुत से लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी की इब्तदाई फेज़ में था। साउथ ईरान में कुछ चीज़ें सियासत से भी ज़्यादा पुरानी हैं, जैसे साथ साथ रहना। इस बच्चे की माँ शिया और बाप सुन्नी था और एक घर जो सालों से बिना कोई बाउंड्रीज़ के जी रहा था। और अब एक बेटे की कमी, उसका गम, सबको एक साथ पूरे घर को झिझोड़ रहा है।
1: इसराइल ने जो हमला किया था पहला, उसके अंदर ये शहीद हो गए थे। कह रहे थे कि इंडिया में जो फिल्म्स होती हैं वो इनको पसंद थी और सलमान खान को ये पसंद करते थे। आप जानते हैं कि ईरान में जो फिल्म्स लगाई जाती हैं, जो यहाँ के टीवी पे लगाई जाती हैं, वो सेंसर करके लगाई जाती हैं, तो उसमें जो बुरे सीन्स होते हैं वो काट दिए जाते हैं और उसके बाद वो फिल्म भी चल जाती है। तो ये कह रही हैं कि सलमान खान को एज एन एक्टर वो पसंद करते थे।
0: हर लम्हा कोई नई चीज़ हो रही थी। कोई कह रहा था कि वॉर हो जाएगा, कोई कह रहा था ईरान जवाब का इंतज़ार कर रहा है। हम जहाँ थे टेंशन वॉर का बहुत ज़्यादा था, हमें किश्म की तरफ जाना था, लेकिन जब सुना किश्म पर हमला होने वाला है तब हमने अपना रास्ता बदल दिया और हम हुरमुज़ की तरफ निकल गए। हुरमुज़ इन दिनों सिर्फ एक जजीरा नहीं था, पूरी दुनिया की न्यूज़ का सेंट्रल पॉइंट था और पूरे इलाके का इंतज़ार था कि हुरमुज़ में क्या होने वाला है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जगह थी जहां हम जा रहे हैं।
2: ये जो हम लोग इस वक्त खड़े हैं ये हुरमुज़ है, जैसा मैंने आपको बताया वो ब्लू डॉट जो है हुरमुज़ का है। और यहां पर आप देखें कुछ कश्तियां हैं जो ऑलरेडी इन कश्तियों को रोका गया है और ये कश्तियां यहां से जब ये एक आइलैंड है और वो अभी फिलहाल क्योंकि वॉर सिचुएशन है इसके लिए उस रास्ते को और वहां तक को बंद किया गया है। और ये पहाड़ के पीछे अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको दुबई मिलेगा और ये वही एरिया है ओमान और ईरान के बीच का जो वाटरवे है जिसे स्ट्रेट ऑफ हुरमुज़ कहते हैं वो यही है। कहा जाता है कि बहुत खूबसूरत है ये पहाड़ जो है, कुछ वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर पूरा रेड वाटर होता है, यानी बहुत ही खूबसूरत जगह है। लोग आते हैं यहाँ पर और अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर भी करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ बच्चे आ रहे हैं फिशिंग करने के लिए। तो यानी जंग का माहौल ऐसा लग रहा है, हुरमुज़ है जंग का माहौल होगा, लेकिन आप देखेंगे तो जिंदगी नॉर्मल है क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है तो दुकानें बंद है, लेकिन बाइक्स देखेंगे आप चल रही है। ये बच्चे लोग यहाँ पर जमा है, बच्चे लोग जो है फिशिंग करने के लिए आए हैं और ये बच्चों ने ये माही निशुन भी दी बच्चे सर हम माही निशुन भी दी माही की रफ्ती तुम चीजी ये मैंने चजूर की ये इन लोग जो दिखा रहे हैं कि इन लोगों ने यहाँ पर मछलियाँ पकड़ी हैं इसी समंदर से हॉर्मुज के अंदर ये बच्चे जो यहाँ पर आए हैं और इन लोग जो है मछलियाँ यहाँ पकड़ रहे हैं। तो हम लोग एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह पर इस वक्त मौजूद है लेकिन अगर आप गौर करेंगे मैं क्योंकि यहाँ पर तकरीबन सुबह से

0: जब हमने बंदर अब्बास वापस जाने का फैसला किया, वक्त पहले जैसा नहीं चल रहा था। सब कुछ तेज़ हो गया, खबरें, बातें और वो रास्ते जिनसे गुजरना था। लाफ्त में समंदर और रोड के दरमियान हम ऐसे सफ़र पर निकल पड़े जो पुरसकून नहीं था। यहाँ सफ़र सिर्फ मूवमेंट नहीं होता, यहाँ हर रास्ता खुद कहानी का हिस्सा होता है।
1: रहमान रहीम, हम लोग इस वक्त बंदर अब्बास आए हैं और बंदर अब्बास में यहाँ साहिल है, समंदर का किनारा है और ये समंदर के किनारे में आप देख सकते हैं कि उस तरफ हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। और अभी मुझे बात करनी है फारसी में, मैं जाऊंगा एक्सप्लेन करूंगा यहाँ के लोगों को हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के हालात के बारे में कि लोग हिंदुस्तान के क्या इस वक्त सोच रहे हैं और ईरान को कितनी मोहब्बत करते हैं, क्यों मोहब्बत करते हैं, इसको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए।
2: 5 मिलियन मुसलमान जमीयत दर 2,25 मिलियन हमें आशिके शहीद रहबर आयतुल्लाह खामेनाई हसन मोहम्मद वाले मोहम्मद दर हिंदुस्तान शुमा शायद फिल्म दीदी के जनहा तलाय खुदशान का दादन बच्चा है गले खुदशान का आवर्दन दादन मर्दों में हिंदुस्तान दर ये महल्ले सुन्नी नशीन।
0: कभी कभी हम पहुंचते तो हैं लेकिन देर से। ऐसा नहीं होता कि कुछ हुआ नहीं, बल्कि ये एक लम्हा हमसे पहले गुजर चुका होता है जहां हमने रिवायत देखनी थी मगर सिर्फ उसका निशान रह गया। शायद ये खालीपन ही असल हकीकत का हिस्सा है। हर चीज़ कैमरा के सामने नहीं होती, कुछ लम्हे जब हम पहुंचते हैं तो सिर्फ खामोशी होती है।
1: जो चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ का स्ट्रक्चर है बहुत इंडियन स्ट्रक्चर है और जैसे नज़र साहब कह रहे थे कि लखनऊ में जो इमामबाड़ा है, इमामबाड़ा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का, उससे बहुत सिमिलर है। देखें ऊपर जो बिल्डिंग है वो वैसे ही है जैसे हमारे इंडिया में इमाम बारगाह वगैरह के बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसी तरीके की है। इसे हैदराबादियों ने उस ज़माने में बनाया।
0: एक छोटा सा स्टॉप, ठंडा सा वाटरमेलन और कुछ मिनट्स जहाँ लोग सिर्फ आम इंसान होते हैं, ना किसी बड़ी कहानी का हिस्सा। शायद यही छोटे लम्हे हर चीज़ को मीनिंग देते हैं। ज़िंदगी क्राइसिस के बीच कभी पूरी तरह रुकती नहीं है।

0: वो खाक जो अपने अंदर हजारों उम्मीदें समाए हुए, कमसन बच्चों के खून ने पाकीजा किया जिसे, ये खाक अब आसमान में नए रंग बिखेर रही है। इस महकती खाक में सांस लेते हैं।
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हजारों साल गुजर गए, हजरत आदम को ज़मीन पर मबूत हुए, मगर आज भी इस दुनिया पर, इस सरज़मीन पर हक़ और बातिल की जंग जारी है। दुनिया बढ़ती जाएगी, गुज़रते जाएंगे लोग, बादशाहतें, मुमलिकतें, लेकिन हमारी गुफ्तगू उनसे है कि जिनके अंदर अभी भी हक की तलाश जारी है, या यूँ कहें कि उनके यहाँ फितरत का बीज अभी बाकी है कि जिसको हक की आबियारी चाहिए। इसी काम को लेकर हम आपकी खिदमत में अभी ख़याबान वली असर स्ट्रीट, जो कि तेहरान की एक बहुत बड़ी, बल्कि पूरे साउथ एशिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट कहलाती है, हम आपके लिए लेकर आए हैं जंग से पहले, जंग के दौरान और अभी के हालात कि जो सीज़ फायर में चल रहे हैं, कि जहां अभी भी इम्कान है कि शायद कभी भी जंग शुरू हो जाए। अब हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं एक तो वो रिवायत कि जहां पर अमेरिका इसराइल ने मिसाइल मारे, वो जगह जहां पर लोग रहते थे, हॉस्पिटल, स्कूल, कि जहां बच्चे पढ़ने की नीयत से आए थे। दूसरा वो हम आपको दिखाएंगे कि ये पहले कैसे रह रहे थे और अब ये कैसे रह रहे हैं, क्या फ़र्क आया है इनकी ज़िंदगी के अंदर। तीसरा हम आपको उस जगह भी लेकर जाएंगे कि जहां पर रहबर को शहीद किया गया, एक ऐसा रहबर कि जिसने जुल्म के मुकाबले में दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतवरों को सामने झुकना पसंद नहीं किया, बल्कि तवक्कुल अल्लाह किया और तौहीद की हक्कानियत को इस दुनिया में पेश किया। यकीनन ये ख़याबान वली असर हमें इमाम ज़माना की भी याद दिलाती है और ये इनकलाब उसी ज़हूर की तरफ बढ़ता है। हम आपको दिखाएंगे कि असल रिवायत इलाही क्या है।

0: इमारतें फिर बन जाएंगी, मगर जो इन पर गुजरी है वो रातें वो लम्हे पलट नहीं सकते, वो जो बिछड़े हैं वो लौट नहीं सकते, वो दीवारों पर लगी तस्वीरें, ताकतों पर रखी किताबें जो पारा पारा हो गई, खाक में तहरीरें बिखर गई।
1: तेहरान का ये इलाका रिसालत का इलाका है जो कि एक रिहायशी इलाका है। 10 मार्च को यहाँ पर एक नहीं कई मिसाइल मारे गए। दुश्मन जो ये दावा करता है कि हम बड़ा प्रिसाइज, हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम किसी को मार सकते हैं, मगर उसने एक ही जगह पर 300 घरों को बर्बाद कर दिया। 20 लोग शहीद हुए जिसमें से 12 लोग एक ही फैमिली के थे। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर लाशें भी कई दिनों के बाद मिली। मलबा आज इतने दिन गुजरने के बाद भी आपके सामने है कि ये दुश्मन चाहता यही था कि आम इंसानों का कत्ल करे।

दोपहर का वक्त, रोजे की हालत में कितने लोग अपने घरों से इस उम्मीद से गए होंगे जब वो आएंगे तो इफ्तार करेंगे। कितने लोगों ने इन घरों में ये ख्वाब देखे होंगे कि वो अपने बच्चों के लिए शादी करेंगे। कितने लोग पढ़ने के लिए, कितने बच्चे रोज़ा रखकर इस नीयत से घर से निकले होंगे कि आज शाम को अफ्तारी करेंगे। गोके हालत जंग थी, शायद 18 या 19 रमज़ान थी और शब कदर की अमाल की तैयारियां भी होंगी, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि जो घर से निकले हैं जब लौटेंगे तो उनके घर घर नहीं, खाक हो चुके। यहाँ पे जो शहीद हो गए या जिनके घर ख़त्म हो गए, यकीनन उन्होंने तो अपना काम कर दिया। आज हम अगर इतने अरसे के बाद यहाँ पर आए हैं तो हम ये दुनिया को बताना चाहते हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि जो जुल्म अमेरिका और इसराइल ने किया है उसे दुनिया तक बताया जाए। यही मकतब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खासा है कि कभी भी जुल्म के मुकाबले में झुकना नहीं है और मजलूम का साथ देना है। आए आज हम फैसला करें कि हम तारीख के किस हिस्से पर हैं। क्या कल हमारा नाम तारीख में लिखा जाएगा कि हमने जुल्म का मुकाबला किया या मजलूम की सदा में सदा को बुलंद किया।

0: जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक ही फैमिली के लोग, मुझे बाकी नहीं मगर शहीद मेहदी यार उन जवानों में से एक जवान है कि जैसा कि आपको पता है कि ईरान में बहुत ज़्यादा फुटबॉल का क्रेज़ है और हाल ही में इनकी टीम भी वर्ल्ड कप को क्वालिफाई करने के लिए ट्रैवल कर चुकी है। ये भी ये चाहता होगा कि जब ये मैच हो तो ये अपने दादा के साथ अपनी फैमिली के साथ बैठकर इसको देखे, मगर इसका कसूर क्या था? इसका कसूर यही था कि ये उस कौम और उस मिल्लत का जवान था कि जो जुल्म के मुकाबले में खड़ा होते हैं और मज़लूमाने जहान का साथ देते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया कि मज़लूम का साथ दो जुल्म के मुकाबले में खड़े हो, और ये शहादत सआदत है। ज़ाहिरन ये सब चले गए मगर इनका खून जो है वो आने वाली नस्लों को जिंदा रखेगा।
1: आसमान पर रोशनी और बम की सदाएं, अस्पताल में भगदड़, एमरजेंसी में मरीज, और कोई वजूद उन हालात में दुनिया में आ रहा है कि बारूद की खुशबू फैली हुई है। नर्सें व्हीलचेयर को दौड़ाती, कोई नौजाद बच्चों को गोदों में उठाती, मगर कोई कहां इन दर्दों को समझेगा जहां जख्म खाक से भरे हुए हैं।
0: हम लोग जहां अभी खड़े हैं, ये एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है गांधी। न सिर्फ हॉस्पिटल है बल्कि यहाँ पे इसके बराबर में इसका होटल भी है, और ये एक बड़ा मॉडर्न और बड़ा एक्यूब जो है वो हॉस्पिटल है। क्यों इसको अमेरिका ने मारा? ताकि लोगों के अंदर इस्तेराब पैदा हो। एक जगह पर मिसाइल मारते थे और फिर उसके बाद हॉस्पिटल को भी हिट करते थे, ताकि वो जो लोग इलाज के लिए आए हैं वो कहाँ जाएं, लोगों के अंदर बेचैनी हो। जिस तरह इन्होंने गजा के अंदर हॉस्पिटलों को बर्बाद किया, यहाँ पर भी उन्होंने कई हॉस्पिटलों को हिट किया। ईरान के अंदर ये कहने को हम सिर्फ आर्मी या निज़ामी जगह को मारने की कोशिश कर रहे हैं या हम उनको मार रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर शहरों में किसी शहर को मारा गया या मिसाइल मारे गए, वो तेहरान शहर है।

ईरान में हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर या यूँ कहें कि 60-70% स्टाफ है वो फीमेल होता है, डॉक्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, नर्सेज हैं, और ना सिर्फ जाहिर है कि जब इतनी बड़ी तादाद ख़वातीन की है और उसमें अक्सर जो है वो शादीशुदा अपने घर वाली होती हैं, वो भी यही चाहती हैं कि वो अपने घर को सपोर्ट करें और माशरे की भी खिदमत करें। तो आप खुद सोचें कि जब कहीं पर जंग हो, बमबारी होती है, तो वहाँ पर सबसे पहले लोग कहाँ जाते होंगे? हॉस्पिटल, क्लिनिक और जहाँ पर ये सब कुछ इलाज होता है। लेकिन अगर उन जगहों को भी तबाह और बर्बाद कर दिया जाए तो न सिर्फ हॉस्पिटल में आने वाले मरीज़ मुश्किलात में हैं, बल्कि इसके बाद से लेकर ये तमाम जो स्टाफ है वो भी अपने घरों को बैठा है। एक वीडियो आपने देखी होगी, हम उस हॉस्पिटल तो नहीं जा पाए जहाँ पर एक नर्स ने जब वहाँ पर मिसाइल लगे हैं तो इनक्यूबेटर से 3 बच्चों को उठाया है और दौड़ती हुई भागी है। वो चाहती तो अपनी जान बचाकर अकेले भाग सकती थी, लेकिन जब उसने देखा कि ये 3 जवान आइंदा इंसानियत का फ्यूचर है, इस कौम का फ्यूचर है, उसे अपने आगोश में लिया और उनकी जान बचाई।

ये कार्ड है पेट्रोल का, कि जो सब्सिडाइज पेट्रोल की एक लिमिट है जो यहाँ पे हर किसी को मिलती है, इस पे तकरीबन 2.5 रुपए का लीटर पड़ता है, और अगर आप विदाउट सब्सिडाइज करवाना चाहें तो वो तकरीबन 8 रुपए का है। जंग यहाँ पर है और पेट्रोल दुनिया में महंगा हो गया। कितने दिन हो गए जंग को यहाँ पर, लेकिन आप देखें ना पेट्रोल की किल्लत है ना कोई लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, पेट्रोल आराम से मिल रहा है। इज़्ज़ाने मोहतरम, अब आप हक के लिए खड़े हों दुश्मन खुद घुटने टेक देता है। ये तकरीबन 180 रुपए बनते हैं पाकिस्तानी, और तकरीबन हमने 20 लीटर जो है वो पेट्रोल डलवाया है। तो अब आप खुद सोच लें कि $1 में कितना पेट्रोल आता होगा।

या उमेन आप की बेटियां जो खुद फूल की कलियां थीं, जिनके हाथ किताबों के सफे पलटने के लिए थे, जिनके हाथ परिंदों को दाना डालने के लिए थे, जिनकी उम्र मुस्कुराहटों की थी। अचानक खामोशी, परिंदे परवास कर गए मगर खून आलूदा परों के साथ। अभी तो रोजे रखना शुरू किए थे, अभी तो नए कपड़े खरीदने बाबा के साथ जाना था, मगर अफ्तार न हो सका, न ईद तक पहुंच सके। माओ ने खाक से टुकड़ों को उठाया है।

ईरान की जो सबसे चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, जिसे रेड गोल्ड भी कहा जाता है, वो है ज़ाफ़रान। और आप जानते हैं कि ईरान ज़ाफ़रान की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस भी है, पूरी दुनिया में जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, स्वीट्स देख लें या आप, बहुत ये सारी चीज़ें लोकल प्रोड्यूस्ड हैं और बेहतरीन तरीके से जारी है। कहने का मकसद और दिखाने का मकसद ये है कि ज़िंदगी जो है वो आधी ज़िंदगी वैसे ही चल रही है, तो जंग कौन जीता। हम आए हैं तारीख को दोबारा लिखने, हम आए हैं ये बताने कि आज़ाद कौमें भी तरक्की कर सकती हैं, और असल आज़ादी का मतलब अपने आप को खुदा के हवाले करना है। आज़ादी से नहीं कहते कि इंसान अपने आप को जो है वो लिबास को कम कर ले या मगरबी सकावत को अपना ले। आज़ादी तो यही है कि इंसान अपने नफ्स से आज़ाद हो जाए और खुदा की तरफ रुजू करे। यही एक दास्तान न सिर्फ एक शख्स की है बल्कि कौम की है, वो कौम कि जो कई सालों से जद्दोजहद कर रही है, वो कौम के कई सालों से एक ही नारा लगाती है कि जुल्म के मुकाबले में डटे रहना है। और ये बातें नई नहीं हैं, ये बातें दर्स करबला का है, ये मकतब इमाम हुसैन की कौम है कि जिसने अपने आप को कटवाना पसंद किया, ना कि दुश्मन के आगे झुकाना पसंद किया। यही चीज़ इंसान को ताकत देती है, और इस कौम ने आज आपके सामने वो करके दिखाया कि यहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद हैं, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जहाँ पर कोई कमी महसूस की जाती है। दुनिया न जाने किस निगाह से देखती है और न जाने किस निगाह से प्रोपोगंडा करती है। वो यही तो है, एक तस्वीर जो है वो मैदान यानी ग्राउंड की पिक्चर है, और एक तस्वीर वो है जिसे दुश्मन दिखाना चाहता है, मगर असली तस्वीर जो है वो इलाही तस्वीर है कि इंसान अल्लाह की राह में कैसे होना चाहिए। और जब इंसान खुदा की राह की तरफ बढ़ता है तो खुद ब खुद वो निखर कर सामने आता है, खुद एक नूर की तरह आलम में छा जाता है। आज पूरी दुनिया इस कौम की हिम्मत और बहादुरी की बात कर रही है, तो इस कौम के पास कोई कमी नहीं है। हाँ, अगर कोई चीज़ चली गई तो वो रहबर हैं, लेकिन वो भी नहीं गए, क्योंकि शहीद तो हमेशा जिंदा है।

कालीन आप देख रहे हैं, इस कालीन को बुनने में इन्हें 7 साल लगे, और ऐसे बहुत सारे आप ये डिज़ाइन देख लें, आप इसकी ज़र्फ़कारी को देख लें, आप इन रंगों को देख लें, तो आप क्या समझते हैं कि ये कौम इतनी आसानी से हार मानेगी? जिसके कालीनों के जो डिज़ाइन हो वो 2-2, 2500 साल पुराने हों, तो उसको वो कौम हराएगी कि जिसे अभी बनने में भी 2 साल 200 साल हुए? आप खुद बताइए, जंग कौन जीता?

किताबें हैं, मुझे आप बताएं दुनिया के कौन से ऐसे मॉल हैं कि जहाँ पर किताबें पाई जाती हैं। यहीं से पता चलता है कि ये कौम अपने कल्चर को, अपने चीज़ों को किस तरीके से प्रिजर्व करके रखी हुई है। और इल्म हासिल करना और इल्म को अपने अंदर समेटना, जाहिर है जो किताब पढ़ता है वो बहुत कुछ सीखता है। आज वही कौमें कामयाब हैं जो किताबें पढ़ती हैं, इल्म से मोहब्बत है उन्हें। रहबर शहीद फरमाते थे कि जिस तरह आज लोग अपने थीसिस के लिए या रिसर्च पेपर्स के लिए इंग्लिश को रेफरेंस बनाते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा मकसद ये है कि लोग फारसी को अपना रेफरेंस के लिए यूज़ करें, उसके लिए उन्हें ज़बान सीखनी पड़े और उसके लिए इतना काम हो। तो इसी से अंदाज़ा लग सकता है कि जब एक मॉल में 70,000 किताबें हैं तो लाइब्रेरियों में कितनी किताबें होंगी। आइए हमारे साथ लाइब्रेरी को देखते हैं।

0: 61 हिजरी की करबला ने हक और बातिल के दरमियान लकीर खींच कर ये बता दिया है जो मकतब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शागिर्द होगा उसके बदन के टुकड़े तो बिखर जाएंगे मगर वो झुकेगा नहीं। खयाबाने किश्वर दोस्त से उठने वाली खाक ने आज के दौर में हक और बातिल को वाजे किया है कि जान का चला जाना नुकसान नहीं बल्कि हयात है। सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्ला।
1: दुनिया कहती थी कि महलों में ये शख्स रहता है, कहते थे कि इसकी दुनिया में बहुत जायदाद है। कई लोगों ने कहा कि ये बंकरों में जिंदगी गुजारे, मगर वो शख्स यही कहता रहा कि जब मेरी सारी आवाम सड़कों पर या आम जिंदगी गुजारती है तो मैं क्यों बंकरों के अंदर चला जाऊं। हाँ, वो एक शख्स कि जो खलूस और इखलास के साथ रोज़े की हालत में अपने मौला की तरह अपने खाले के हकीकी से जा मिला, यकीनन रूह बदन से निकल गई मगर उसने ऐसी परवाज की आलम को अहाते में ले लिया। हर एक दिल उसके लिए उदास है, वो एक सादा सी जिंदगी गुजारते हुए वो एक आम इंसान की तरह कि जहाँ वो जानता था कि मेरी हुकूमत में अगर एक शख्स कम से कम गजा खा सकता है तो वो उतनी ही गजा खाता था। उसके घर में बिछा हुआ कालीन उसके इज़्ज़वाज का था, उसकी अपनी आमदनी उसकी किताबों के बेचने से होती थी, लेकिन

में मिला वो सांसों को एक नई उम्मीद दे गया, एक ऐसी बेदारी जो सरहदों तक महदूद नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया के हक तलबों के वजूद में नफूस कर गई, और इन सदाओं ने दुश्मन के गिर्द ऐसे तूफान को जन्म दिया कि किश्तियां आपस में टकरा गई। कामयाबी जदीद असला नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, उम्मत की बेदारी है, जो इमारतों के गिरने से, खाक के बिखरने से खत्म नहीं होती। ये मकतबे इमाम हुसैन की निशानी है, जितने बदन गिरेंगे उतनी परवाज होगी। आज हम उस जगह पर खड़े हैं कि जहां पर शायद आप इन पूरे तकरीबन 80 दिन होने वाले हैं, और ये कौम यहीं पर खड़ी हुई है। ये कौम, चाहे वो मिसाइल लग रहे थे, चाहे वो दुश्मन के जहाज़ गुजर रहे थे, मगर ये कौम इस मैदान से, कि जिसे मैदान इनकलाब कहा जाता है, यहाँ से हटे नहीं हैं। और आज भी देख लें कि जब जंग थी तब भी यहीं पर थे, और जब सीज़ फायर है तब भी यहीं पर हैं, और कल अगर जंग होती है तो भी

0: नहीं बढ़े तो फिक्र हो जाती है,
1: शक।
0: ये डॉक्टर वो डॉक्टर फला फला। नफ्स नहीं बढ़े तो क्या होता है मालूम ही नहीं होता, क्योंकि जिस्म को चेक कराया जाता है, नफ्स को कौन चेक कराता है। अइम्मा के ज़माने में लोगों की रविश थी, अलबत्ता बाद में भी आज भी ऐसे लोग हैं जो उलमा के पास जाते हैं और जाके अपने मजहबी हालात को बयान करके पूछते थे कि कोई इसमें कमी तो नहीं है, कोई तब्दीली तो नहीं हो गई। ये वो लोग थे कि जो प्रॉपर और सही जगह से दीन को हासिल करते थे, इसलिए पूछते थे, चूंकि ज़माना गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर तब्दीली हो जाती है, इस हकीकत को इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो जाके पूछते थे कि ऐसा नहीं कोई ऐसी तब्दीली, ठीक है पिछले साल हम आए थे और सब चेक कराए थे, एकदम परफेक्ट था, ठीक था सब, लेकिन इस एक साल के बीच में कहीं अनजाने में गलती से कोई तब्दीली ऐसी तो नहीं हो गई है कि जो हमारे नफ्स को किरदार को नुकसान पहुंचा। आज कितने मोमिनीन वैसे होते थे, आज भी बाज हैं, कितने लोग हैं ऐसे, किसको इस बात की फिक्र। और अब तो मेडिकल साइंस ने मशवरा दिया है ना कि हर साल आके पूरा बॉडी चेकअप कीजिए कहीं कुछ है तो नहीं, और वो समझ में आ गया, अच्छे खासे लोग कराते हैं, वो समझ में आ गया। बुनियादी चीज, इस बात बड़ी हो गई, इस पर इतनी गुफ्तगू की जरूरत नहीं थी, बुनियादी चीज आपकी खिदमत में अर्ज़ करके इस बात को ख़त्म करें कि बेसिक एतबार से हमारी फिक्र में अगर मादियात गालिब होगी तो हम जिस्म का ज़्यादा ख्याल रखेंगे और नफ्स को भूल जाएंगे, और अगर मादियात गालिब नहीं होगी, नॉर्मल और बैलेंस जिंदगी होगी, तो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर हम दोनों को बैलेंस करके चलेंगे। चूंकि मादियात गालिब होती है लिहाजा हमारे यहां हर चीज का महवर जिस्म, पैसा, दौलत, मकाम, फला फला, ये सारी चीजें उसी की बेस पे सब तोला जाता है, ये प्रॉब्लम। ये एक शक्ल है और एक शिख है कि जिसका ताल्लुक तक्वे इलाही से है। आइए इसके बाद अमीरुल मोमिनीन मौलाए मुत्तकियान हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम के कलमे इसार में हमारी गुफ्तगू चल रही है। मौलाए कायनात ने 20 चीज़ों पे गुफ्तगू की है, उसमें हम लोगों ने बात की है कि अल्लाह ने ईमान को फ़र्ज़ किया ताकि शिर्क से हमको पाक कर सके, नमाज को इसलिए ताकि तकब्बुर से बच जाएं, ज़कात को रिस्क का सबब बनाया और रोज़े को लोगों के इखलास के इम्तिहान के लिए वाजिब किया, हज को दीन की तक़वियत के लिए और जिहाद को इस्लाम की इज़्ज़त के लिए। जिहाद इस्लाम की इज़्ज़त, हम लोगों के दरमियान जिहाद के मानी पे गुफ्तगू हुई, बेसिक चीज़ों पे गुफ्तगू हुई, और पिछले हफ्ते बात इस मकाम पे थी कि सबसे बुनियादी जिहाद जिहाद बिन नफ्स है, जिसको जिहाद अकबर कहा गया, नफ्स के साथ जिहाद। हमारे यहाँ शुजाअत के सारे हुनर इसमें हैं कि आप सामने वाले को कैसे छोटा कर दें, मगलूब कर दें, हरा दें, शिकस्त दे दें। इस्लाम में इंसान की शुजात के हुनर ये हैं कि अपने नफ्स को शिकस्त दे दें। ये हमारे और इस्लाम के सोचने के अंदाज में फ़र्क है, फिक्र में फ़र्क है, अगर ऐसी फिक्र है तो, नहीं है तो बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। बुनियादी चीज़ यह है कि अपने नफ्स को हरा दें। हमने पिछले हफ्ते आपके सामने इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वाक़ियात को दो अदद पेश किए थे, और ऐसे बहुत सारे उलमा के वाक़ियात कि जिन्होंने अपने नफ्स पे कंट्रोल किया। मोमिनीन में भी बहुत से ऐसे हैं जो अपने नफ्स पे कंट्रोल करते हैं, ये बुनियादी चीज़ है नफ्स। खूब एक चीज़ आपकी खिदमत में करके और इसी को बात आगे बढ़ाएं कि उमूमन दीनदारी का मियार ये होता है कि इंसान हराम छोड़ के वाजिब कर रहा है, यहीं से दीनदारी समझी जाती है। यानी झगड़ा जो होता है वो हराम और वाजिब के बीच में, या बल्कि और दूसरे अल्फाज में कहें हराम और हलाल के बीच में, हलाल में फिर वाजिब व मुस्तहब व मुबाह सब आ गया ना। बाज़ औक़ात लोग ज़्यादा स्पेस चाहते हैं तो मकरूह भी शामिल कर लेते हैं, ये हलाल में आ जाता है, ले लेते हैं। तो आदमी कोशिश करता है कि मसलन हराम छोड़ें, ये कर इंसान

का मकाम ये नहीं है कि वो हराम और हलाल के बीच में आके लड़े। इंसान का मकाम ये है कि अल्लाह की बारगाह में कुर्बत को हासिल करने के लिए हलाल और हलाल के बीच में लड़के ये देखे कौन सा हलाल अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा अफजल। अम्बिया की जो दास्तानें, जो वाकयात हत्ता कुरान मजीद ने जो नकल किए हैं, इबरत से खाली नहीं है। उन सारे वाकयात में इसी चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि अम्बिया ने कैसे, ये हमारे लिए आइडियल है, नमूने अमल। मोमिन का झगड़ा हलाल और हलाल के बीच में होना चाहिए। मोमिन का हराम से क्या ताल्लुक? अल्लाह पे ईमान है तो हराम कैसा पे? हराम का मतलब कि ईमान में प्रॉब्लम है। ये अब यहां से फिर एक तो नफ्स का जिहाद, जिहाद बिन नफ्स यहां पे है कि एक चीज है पसंद है लेकिन क्या करें, हराम में छोड़ना पड़ेगा। फिर भी एक ज़हनी एतबार से फिक्र बनी हुई है, आमादा है कि भाई तो हराम है, अलाउ नहीं है, निस्बतन उसका छोड़ना। लेकिन जब दो हलाल हैं और एक हमको ज़्यादा अजीज़ है लेकिन अल्लाह के नज़दीक दूसरा अजीज़ है, ऐसी सूरत में इस हलाल को छोड़ के उस हलाल पे जाना वो इससे ज़्यादा सख्त है। क्योंकि यहाँ पे शैतान आ जाता है। शैतान ऐसा नहीं कि सिर्फ हराम की तरफ बुलाता है, नहीं, शैतान ज़्यादा से छुड़वा के कम की तरफ भी बुलाता है। यहाँ पे शैतान आके आपके मकाम और मर्तबे को कम करने के लिए जहन में वसवसा पैदा करेगा कि ये भी तो हलाल ही ना, क्या मुश्किल है, इतने सारे लोग तो करते हैं, आप भी नहीं करेंगे तो क्या हल हो जाएगा, क्या मुश्किल हो जाएगी। तो असल जो मोमिन का जिहाद है नफ्स से वो यहाँ से शुरू होता है। वो जिहाद कोई इतना बड़ा जिहाद थोड़ी है जितना बड़ा ये। यहाँ से इंसान के अपने काम, यहाँ पे इंसान को नफ्स मारना पड़ता है, यहाँ पे इंसान को अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। शबाए कद्र की मजलिस में हमने इस बात की मिसाल दी थी और फिर याद दिला के आगे बढ़े कि जिस वक्त अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने दुश्मन को, कि जो नामी गिरामी दुश्मन था, अच्छे अच्छे उसके नाम से डरते थे, इमाम ने उसको जेर किया, मगलूब किया, उसके सीने पे सवार हो गए। याद आया वाकया, जब सीने पे सवार हुए उसने तौहीन की अमीरुल मोमिनीन की, नाज़ेबा अल्फाज के। अब बताइए अमीरुल मोमिनीन को क्या करना चाहिए, हम लोगों के जहन से भी तो वाकया हमारी निगाह के सामने है, लिहाजा हम लोग पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं और आगे निकल जाते हैं। मौला को क्या करना चाहिए था भाई? सारा काम तो दीन के लिए है, जंग पूरी दीन के लिए है, क्या मुश्किल क्या है इसमें? सर को कलम कर लेते, वो भी ऐसा दुश्मन की जो आसानी से काबू में नहीं आता बकौल दुनिया के, अमीरुल मोमिनीन के लिए नहीं। अभी सीने पे सवार हो गए हैं, अभी तो गला काटना चाहिए, अब हाथ में आ गया, खत्म। इसमें कहां से नफ्स शामिल हो रहा है? लगता है कहीं से नफ्स शामिल होता हुआ इसमें, लेकिन अमीरुल मोमिनीन सीने पे से उतर गए। ये है दो हलाल के बीच की जंग। अगर उसके सर को कलम कर लेते तो कोई हराम काम नहीं था, मकरूह नहीं था, जिहाद था, अल्लाह की राह में जिहाद था, इससे बेहतर मकाम क्या था? लेकिन चूंकि यहां पे एक कैफियत पैदा हो गई थी कि जिसमें अपने नफ्स के शामिल होने का शायबा था, लिहाजा इससे बेहतर वो कंडीशन है कि जब हम इस हालत से बाहर निकला। आसान है कि उसको छोड़ दिया, सीने से उतर गए। जाहिर से उतरने का मतलब यह कि अब जंग फिर कहीं से वहीं से हो सकता है शुरू हो। इतने सारे अब कल तो हम लोग थोड़ी सी आसानी के लिए छोड़ो भी कौन इतना, मैदान जंग में दुश्मन की तलवार के सामने भी अमीरुल मोमिनीन ने इस जहर से देखे ना, हम लोग नारे और वाहवाही तो बहरहाल है, ठीक है, मोमिन को खुश भी होना चाहिए, लेकिन इतना खुश ना हो जाए कि दर्स भूल जाए, जो उससे पैगाम मिल रहा है वो भूल जाए। मैदान जंग में इस कीमत पे भी अमीरुल मोमिनीन ने क्या किया, बेहतर कंडीशन को अपनाया। कितने लोग थे वहां जिन्होंने समझा, अच्छा, बल्कि रवायात में लोगों ने इतराज किया, या रसूलुल्लाह देखिए इतना सख्त दुश्मन था और काबू पाके, इतराज करने वाले तो हर जमाने में थे, अमीरुल मोमिनीन से दुश्मन बल्ता खुद रसूल पे इतराज करने वाले थे, और इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम के जमाने तक ऐसे अफराद थे।
जो अइमा पे आके इतराज़ करते थे।

ऐसा क्यों किया, वो क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, ये क्यों पहना, ये इस तरह के इतराजात होते थे। इतराज़ किया लोगों ने वो काम अमीर अलमोमिनीन का कि जो नफ्स की बुलंदी की बुनियाद पे या नफ्स की बुलंदी के लिए था, उस काम पे आके लोगों ने इतराज़ किया। क्यों नहीं, क्यों किया? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे। ये मोमिन के लिए, यहां से मोमिन का अपने नफ्स का जिहाद शुरू होता है। आइए एक आध आयत को पढ़ें और फिर आज फिर वक्त खत्म हो रहा है इंशाल्लाह, आगे अल्लाह तौफीक दी तो इस बात को कंटिन्यू करेंगे। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, सूरह नाज़ियात की दो आयतें हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बे, और जिसने अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा किया। मकाम रब्बे, अल्लाह के मकाम का खौफ, दोनों तरह का खौफ है। एक तो ये खौफ, हम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह की खिदमत में, अल्लाह की बारगाह में रोज़े महशर हाजिर होना है, हिसाब देना है। एक ये खौफ कि जो कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह देख रहा है, हम अल्लाह के बारगाह में हैं, हाजिर हैं। अच्छा तो नहीं कभी हम यहाँ पे हैं, हम लोग छत होते हैं, सब कुछ है, तो अल्लाह नहीं देख रहा? अल्लाह तो देख रहा है। तो जिसने भी अपने अंदर मकाम रब का, अल्लाह के मकाम का खौफ पैदा किया, वहाँ नफ्सा अनिल हवा, और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोका। कुरान की आयत है, कुरान की गारंटी है। हमारा कितना कुरान पे ईमान है, ये जाहिर सी बात है कि ईमान की बुनियाद पे अमल होता है। अमल में ये चेक करना होगा कि ईमान कितना है। जिसने भी अल्लाह का खौफ पैदा किया और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोका, फ़इन्नल जन्नत हिया मावा, तो जन्नत उसके लिए ठिकाना है, उसका मरकज है। जन्नत के पीछे तो हर आदमी, अगर ये बात अंदाज किया कि मोमिनीन का मकसद जन्नत नहीं है, अल्लाह की मर्जी, रिजवानु मिन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रिजवानु मिन अल्लाह अकबर, अल्लाह की रजा कायनात की सबसे बड़ी चीज़ है। मोमिन का मकसद इबादत में भी नियत क्या करेंगे नमाज में, क़ुरबतन इलल्लाह। मोमिन का असल मकसद ये, जन्नत तो मिल जाएगी, जन्नत। अभी अय्याम अज़ा आ रहे हैं, बहरहाल बहुत सी चीज़ें इस्लाह भी होंगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन जन्नत के परवाने भी बटेंगे। जन्नत वाजिब और जन्नत ये, जन्नत कुरान बताता है जन्नत का मेयार। कुरान से पूछें जन्नत, हमारी आपकी मिल्कियत थोड़ी जन्नत की, जिसको दिल चाहे दे दिया, जिसको दिल चाहे नहीं दिया, जिससे दोस्ती है उसको दे दिया और जिससे झगड़ा हो गया उसको छोड़ दिया। मेयार कुरान बताता है, कुरान कह रहा है अल्लाह का खौफ हो एक, और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोको तो तुम्हारा मरकज जन्नत है। इतना करोगे तो जन्नत चले जाओ। खुद ये तो हो गया आखिरत, दुनिया के एतबार से सूरह अनकबूत आयत 69, इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वल्लज़ीना जाहदू फीना, जो लोग हमारे लिए या हमारे रास्ते में या हमारे हक में कोशिश करते हैं, जिहाद करते हैं, अल्लाह के लिए कोशिश करते हैं, क़ुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह के लिए जो कुछ भी अल्लाह के लिए। अब देखें ना कि जितना इंसान के अमल में इखलास बढ़ेगा उतने उसके अमल की उतनी ही वैल्यू ज़्यादा होती है। क्यों अमीरुल मोमिनीन ने एक बज़ाहिर जो हमारी निगाह में इतना सा फ़र्क है उसके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया? अलबत्ता अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी में रिस्क नहीं है, वो यकीन था, लेकिन ज़ाहरी अदबार से जो अगर गुफ्तगू की जाए, क्यों अमीरुल मोमिनीन ने इतना उसको छोड़ दिया, फिर उतर के आए दोबारा फिर थोड़ी देर बाद आके? क्यों? इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन अपने इस अमल की क्वालिटी को ज़रा भी लो नहीं करना चाहते थे। वो जो हाई लेवल पे अमल की क्वालिटी थी और जो चली आ रही थी उससे, तो ऐसा शायबा भी पैदा ना होना चाहिए कि कहीं से हो जाए लो। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन ने इस काम को किया। लिहाजा ये फीना दर्जे कमाल पे होना चाहिए, वल्लज़ीना जाहदू फीना, जो भी हमारे राह में, हमारे हक में, हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उन्हें अपने रास्तों की हिदायत करेंगे। इंसान जितना अल्लाह के रास्ते में कोशिश करेगा, अल्लाह की तरफ से हिदायत बढ़ती जाएगी।

याद दिलाए, आके मिंबर से एक ऐसी शक्ल पेश करे कि हमको अहले बैत याद आ जाए, हमको अल्लाह याद आ जाए, हमको रसूल याद आ जाए। खूब इसको कहते हैं जाकिर, एक किरदार को पेश करे, एक शक्ल को पेश करे। कुरान मजीद ने मेयार बताया मुबल्लिग का, वो लोग कि जो रिसालात इलाहिया की तबलीग करते हैं वो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। तो सबसे बुनियादी शर्त यह है कि आलिम या जाकिर जो भी मेंबर वो किसी से डरे नहीं। और दूसरी चीज बताई, उनके हिसाब के लिए अल्लाह काफी है, लिहाजा किसी भी तरह के किसी हिसाब के लिए वो किसी और पे नजर न रखे। खूब ये इतनी यहां पे गुफ्तगू होती भी रहती है। दूसरा मामला आता है सामेईन का, सुनने वाले, उसमें तो सभी हैं, हम सब हैं, अभी बहुत से मजलिस सुनते हैं और अल्लाह तौफीक दे कि फर्श अज़ा पे बैठे इस आदत को हासिल करें, सुन के इल्म बढ़ता है। सामेईन का भी अपना एक मेयार होना चाहिए, ये नहीं कि जो कुछ भी मिंबर से कह दिया गया सबको एक्सेप्ट कर लिया। आप अपने 5 साल 10 साल के बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तो देखते हैं कि अगर ऑप्शन है तो कौन सा अच्छा स्कूल। ये मजलिस दीन का स्कूल है, दरसगाह। आप देखें कि कौन सा अच्छा जाकिर है कि जो आपके बच्चे को या आपको बेहतरीन दीन दे सकता है। जिम्मेदारी आपकी, अफजल को छोड़ के कोई अकलमंद मफजूल की तरफ नहीं जाता है। इंतखाब करें, जाने के बाद अगर कोई चीज समझ में आती है तो उसको नोट बना के, पॉइंट्स बना के रख लें, क्योंकि वो जिंदगी के लिए बहुत कीमती है। नहीं समझ में आती तो जाके हतमन सवाल करें। सवाल करना आपका हक है, जवाब देना पढ़ने वाले की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आया ही इसीलिए है कि आपको मुतमईन करें। गलत चीज अगर है और आपने एक वाह सुभान अल्लाह से उसकी ताईद कर दी तो जब रोजे महशर वो बोलने वाला उस गलत चीज का हिसाब देगा तो आपको भी खड़े होकर देना पड़ेगा, क्योंकि उसने तो ऊपर से बताया, नीचे से तुमने वाह कह के बाकी लोगों के लिए ताईद कर दी कि हाँ ये बहुत परफेक्ट चीज है। मजलिसों का इंतखाब कान के जायके की बुनियाद पर ना करें, अक्ल व शऊर की बुनियाद पर करें कि वो कौन सी चीज है कि जो हमारे करबला इनकलाब का नाम है। ऐसी मजलिसें सुने कि जो आपके नफ्स में इनकलाब बरपा कर दे, आप में तब्दीली पैदा कर दे। हर मजलिस के बाद अपना हिसाब लें कि इस मजलिस को हमने सुना तो इल्मी, फिक्री, मुख्त अमली किस एतबार से आपके अंदर कुछ इजाफा हुआ, कुछ बड़ा जाकिर से मिला कि नहीं मिला, हमने उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। जाहिर सी बात है कि जब मेयार की बुनियाद पर मजलिस सुनेंगे तो हो सकता है कि वो जायके वाली ना हो, मजा ना आए। मजे की बुनियाद पर हक व बातिल का फैसला नहीं होता है, मजे की बुनियाद पर सही और गलत का फैसला नहीं होता है। कुरान मजीद कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसान तक रहू शयन व हुआ खैर लकुम, कुछ चीजें हैं कि जो तुम्हें पसंद नहीं आती लेकिन वही तुम्हारे लिए खैर है। वसान तो हिब्बू शयन व हुआ शर लकुम, कुछ चीजें हैं जो तुम्हें पसंद आती है लेकिन वो तुम्हारे लिए शर है। वल्लाहु यालम व अंतुम ला तालमून, अल्लाह सब कुछ जानता है, तुम कुछ नहीं जानते। लिहाजा जो अल्लाह बता रहा है उसको फॉलो करो, उस रास्ते पे चलो और वही तुम्हारे लिए निजाम हयात होना चाहिए। तो अपनी पसंद और नापसंद की बेस पे नहीं तय कीजिए मजलिस। दो चीजें होती हैं मिंबर से, एक होती है खिताबत और एक होता है दीन। इन दोनों को महसूस करें, दो अलग चीजें। दीन को खिताबत के अंदाज में दिया जाना बहुत अच्छा है लेकिन दीन को हटा के खाली खिताबत दिया जाना ये गलत है। खिताबत के उस पुरजोश माहौल और समा में
دین کو تلاش کرنے کی حتمن کوشش کیجیے.

और यही चीज़ मेयार होती है कि जाकिर, आलिम, मेंबर, ये सारी चीज़ें। वो बात को आगे के पॉइंट पे बढ़ाएं क्योंकि फिर बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। तीसरा ग्रोह होता है मुंतजमीन का, जो ऑर्गेनाइज करते हैं, और हमें लगता है कि बहुत अहम है ये ग्रोह, क्योंकि ना जाकिर आके खुद से मेंबर पे बैठता है और ना सामीन लाके बिठाते हैं खुद से, लाते मुंतजमीन है। ये और बात है कि अगर मुंतजमीन का अल्लाह पे ईमान होता है तो इलाही मेयार पे लाते हैं, मजमे पे ईमान होता है तो फिर पब्लिक डिमांड पे लाते हैं। वो पब्लिक डिमांड पे सामान को लाना ये दुकानदारों का काम है, और बाज़ औक़ात दुकानदारों में भी इतना ज़मीर बेदार होता है कि जो बहुत ज़्यादा नुकसान की चीज़ें होती हैं वो भी पब्लिक डिमांड पे नहीं रखते। लिहाजा पब्लिक डिमांड कोई मेयार नहीं है, मुंतज़मीन का काम है कि इलाही मेयार पे। मुश्किल होगी, देखिए तबलीग, चाहे मिंबर पे मुबल्लिग बैठ के तबलीग करे ज़ाकिर आलिम, और चाहे जो भी इंतज़ाम कर रहा है तमाम, मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचिए कि आप ये काम करेंगे और आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अइम्मा ने यह काम किया तो उनको मुश्किल हुई, अंबिया ने किया तो उनको मुश्किल हुई, वो तो मासूम थे। अब हम उनसे बेहतर तो नहीं है ना कि उन्होंने इस काम को किया तो दुनिया से उनको मुश्किल पेश आए, और हम करें तो हमको कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। इतने अच्छे तो नहीं है ना, हम तो उनके पीछे ही हैं, तो मुश्किल तो पेश आएगी। और यही इम्तिहान है, यही जिहाद है, यही कोशिश है, यही इस्लाह माशरा। लिहाजा कभी पब्लिक की पसंद की बुनियाद पे इंतखाब नहीं होना चाहिए। यकीन माने, हमने ये बात जुमला इससे पहले भी कहा है, फिर आपको याद दिलाएं, अगर हम यहाँ पे आके गुफ्तगू कर रहे हैं और बिलफर्ज 100 लोग हैं तो एक घंटे का नहीं 100 घंटे का हमको हिसाब देना पड़ेगा। जो लोग वाह उनको भी देना पड़ेगा, मुंतजमीन को भी उसी 100 घंटे का हिसाब देना पड़ेगा। अगर तुम जानते थे तो तुमने इस मजमे पे इस आदमी को क्यों थोपा? तुमने तो लाके थोपा ना, तभी तो मजमा सुन रहा था। हिसाब देना पड़ेगा ये हमको, अल्लाह हमसे हिसाब मांगेगा। इतना अहम मौका, ये 10 दिन तो बहुत कीमती दिन होते हैं तबलीग के। ये एक अलग मसला है, कभी बात करेंगे कि जो एक चीज शुभा पैदा किया जाता है कि तबलीग के दिन नहीं है फला फला। कभी भी बाज़ औक़ात ताल्लुकात की बुनियाद पे, अरे फलां साहब उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनसे मजलिस नहीं पढ़वाएंगे तो बुरा मान जाएंगे। ज़ाती मामलात की बुनियाद पे कि फलां से मजलिस पढ़वा लेंगे तो कुछ हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। अभी तो हमने वाकया पेश किया मौलाए कायनात का कि दीन के मसले में ज़ातियात शामिल नहीं होती। खौफ की बुनियाद पर फलां से मजलिस नहीं पढ़वाएंगे तो फिर हमको चार बात सुना देंगे। मिंबर है ये, आज़ादारी है, इस आज़ादारी के लिए सरकार सैयदुश्शुहदा ने अब्बास और अली अकबर जैसे जवानों को कुर्बान किया। इसलिए नहीं कुर्बान किया है कि अब्बास और अली अकबर के खून पे चल के तुम अपने ताल्लुकात को बहाल करो। मिंबर इसकी कीमत है, अजीम शख्सियतों के खून इसकी कीमत में दिए गए हैं, तब ये इस मकाम पे है। तुम उसको ज़ाती मामलात में मत इस्तेमाल करो, ख्वाहिशात के लिए, मज़े के लिए, जायके के लिए मत इस्तेमाल करो। आज़ादारी है, इसकी कीमत को पहचाना जाए। सरकार सैयदुश्शुहदा ने अपने क़याम के मकसद को बयान किया कि जिससे आज़ादारी जुदा नहीं हो सकती है, इन नमा खरज तो लतलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, हम अपने जद की उम्मत में इस्लाह के लिए क़याम कर रहे हैं। आज़ादारी को इस्लाह से जुदा करना सरकार सैयदुश्शुहदा के मकसद पे हमला करने जैसा है। लिहाजा आज़ादारी हो तो वो हो कि जो हक को लोगों तक पहुंचाए। इस आयत शरीफा पे बात को खत्म करते हैं, सूरह बकरा 159, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अनज़ला मिनल बय्यनात वल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नास फिल किताब उलाइका यलअनहुमुल्लाह व यलअनहुमुल्लाइनून। जो लोग हमारे नाजिल किए हुए वाज़ह बयानात और हिदायत को हमारे बयान कर देने के बाद भी छिपाते हैं, उन पर अल्लाह भी लानत करता है और तमाम लानत करने वाले भी लानत करते हैं।

हक को होते हुए पेश ना करना यह हक को छिपाना है। और ये कुरान कह रहा है कि हक के छिपाने वाले पे अल्लाह भी लानत करता है और लानत करने वाले भी लानत करते हैं। लिहाजा इस आज़ादारी मिंबर मजलिस इसकी कीमत को पहचाने और उसके हक को अदा करने की कोशिश करें। आखिर में बारगाह परवरदिगार में दुआ करते हैं पालने वाले हम सबको आमाल सालिह की तौफीक इनायत करें, आमाल कबीहा से महफूज रखें, पालने वाले हमारे गुनाहों को बख्श दें, बारिला हमारे मरहूमीन को बख्श दें, पालने वाले इस्लाम और मुसलमीन की हिफाजत फरमाए, बारिला दुश्मनान इस्लाम को नीस्त नाबूद, पालने वाले हमारे उलमा का साया हमारे सरों पे बाकी रखें, बारिला रहबर व मराजे को तूल उम्र इनायत फरमाए, पालने वाले हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए, हमें उनके आवान व अंसार में शरीक होने की तौफीक इनायत फरमाए। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد

0: 92 में ये मंदिर बनाया गया था। हम लोग यहाँ ये मंदिर देखने आए हैं। ये मंदिर में जो इसका मेक है, कहा जाता है इसका डोम जो है, वो डोम इस खास तौर से बनाया गया है जहाँ पर इरेनियन आर्ट और इरेनियन आर्किटेक्चर और इंडियन आर्किटेक्चर को मिक्स करके बनाया गया है।
1: जब जंग का नाम आता है तो कुछ लोग सिर्फ भागने के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसके बरखिलाफ हक की तरफ गामजन रहते हैं। उन दिनों जब पर्शियन गल्फ में बेचैनी और इज़्तिराब था, कुछ लोग दूसरे शहरों से हत्ता ईरान के बाहर से इस नुक्ते तक पहुंच गए ताकि वो देखें, न सिर्फ देखें बल्कि अपने आप को वहां महसूस कर सकें। मजलिस व मातम बहुत से लोगों के लिए सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये एक पनाहगाह होती है, ये एक मरकज होता है, ऐसी जगह जहां लोग उनके साथ खड़े होते हैं, जो महसूस करते हैं कि उनकी किस्मत एक जैसी है।
2: ये कि एज बुजुर्ग तरीन बोंगाई के दादी जुहराज बम्बई पे ईरान में बम्बई पे लंदन में फिर अस्तादन ये कि बुजुर्ग तरीन अल्हम्दुलिल्लाह दरसी ने 25 साल अल्हम्दुलिल्लाह खुदा को मत कर दे और मुझे रसी दे बाद از اون تقریبا 8 9 سال لندن بودم و بعد از اون اومدم اینجا الان ایران هستم تو رسانه کار میکنم کارهای رسانه انجام میدم تو اینستاگرام تو یوتیوب تو فیسبوک و اینا و برای کار کودک بزرگ سال ها اینا انجام میدم خوب سوال این است که چرا من زندگی لندن را ویل کردم و اومدم ایران و اینجا درس بخونم
1: जितना ज़्यादा खबरें आ रही थी बंदर अब्बास की गलियां भी उतनी ही ज़्यादा भर रही थीं। लोग सिर्फ वाकईयत को देखने नहीं आए थे, लोग सिर्फ हकीकत को देखने नहीं आए थे, कुछ लोग सपोर्ट के लिए आए थे, कुछ फ़िक्र के लिए, कुछ सिर्फ ये चाहते थे कि साथ साथ रहें। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा था वो खौफ नहीं था, वो वजूद था। ऐसा शहर जो बेचैन भी हो सकता था लेकिन उसने इस्तेकामत दिखाई, वो खड़ा रहा और अपने आप को मंजर से हटाया। कुछ जगह ऐसी ही होती हैं जहां कैमरे को देर से समझ में आता है कि उसे धीमे धीमे चलना चाहिए। गुलजारे शौदा ऐसी ही जगह है। यहां कोई ताजी खबर नहीं ढूंढता, ना कोई एनालिसिस करता है, ना कोई नारा लगाता है। सिर्फ फैमिलीज होती हैं जिन्होंने किसी अपने को खो दिया है और शहर अभी तक कोशिश कर रहा है कि उनकी गैर मौजूदगी के साथ जी सके। सारे नामों के बीच कुछ कहानियाँ जहन में ज़्यादा रह जाती हैं, जैसे मकान आसरी कि उस स्कूल में बम गिरने के बाद इस बच्चे का कोई हिस्सा नहीं मिला सिवाय एक जूते के। इनके वालिदैन अभी भी रोज़ आते हैं तलाश में कि काश मेरे बच्चे के जिस्म का कोई एक हिस्सा मिल जाए। जैसे शहीद बारानी, जिस दिन हम लोग पहुँचे उसी दिन इस बच्चे की यौम विलादत यानी बर्थडे था। मैं ये सोच रहा था कि इनके वालिदैन आज उनके दिल पे क्या गुजरी होगी जब उन्हें याद आया होगा कि आज मेरे बच्चे की विलादत का दिन है और मेरा बच्चा मेरे बीच में नहीं है। कुछ ऐसे गम होते हैं जो रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते। गुलजारे शहदा का माहौल इतना सख्त था कि बहुत से लोगों ने सोचा कि यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कि नस्ल जो यहाँ पढ़ रही है उसने ईरान इराक जंग नहीं देखी, ना अलार्म की आवाज़ सुनी, ना बंकर की रातें। बहुत से लोगों के लिए जंग सिर्फ एक चीज़ थी जो किताबों में थी, डॉक्यूमेंट्रीज में थी या वालिदैन की कहानियों में। लेकिन इन दिनों पहली बार कुछ चीज़ सिर्फ कहानियाँ नहीं रही, अब धमकियां सिर्फ धमकियां नहीं रहीं। खबरें ज़्यादा हकीकी लगने लगी थीं और लोग अब समझ रहे थे कि क्यों सालों से कुछ नारे इस मुल्क में लगाए जाते हैं।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग एक शहीद के घर पे आए हैं, जो मीनाब में बच्चे शहीद हुए हैं उनमें से एक बच्चे के घर पे आए हैं वालिदैन से मिलने के लिए। और ये हमारे अहले सुन्नत बरादरी से है, यहाँ फ़र्क नहीं है शिया सुन्नी का। मीनाब में अहले सुन्नत बच्चे भी थे, उनके वालिदैन से मिलने आए हैं। उनको उनके लिए एक हदिया और एक तोहफा लेके आए हैं और

0: उनके लिए दुआगू हैं, आप भी दुआ कीजिएगा, उनके वालिदैन से बात करते हैं। जंग जंग जंग जंग जंग तब हकीकी हो जाती है जब वो घर तक पहुंच जाती है। उससे पहले तक सब कुछ खबर लगती है, लेकिन यहाँ इस घर में अब कुछ भी खबर जैसा नहीं है। मोहम्मद ताहा उन्हीं नौजवानों में से एक था जिसकी ज़िंदगी आम सी थी। हिंदी फिल्में पसंद करता था, सलमान खान को पसंद करता था, हंसता था, खेलता था और अपने नस्ल के बहुत से लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी की इब्तदाई फेज़ में था। साउथ ईरान में कुछ चीज़ें सियासत से भी ज़्यादा पुरानी हैं, जैसे साथ साथ रहना। इस बच्चे की माँ शिया और बाप सुन्नी था और एक घर जो सालों से बिना कोई बाउंड्रीज के जी रहा था। और अब एक बेटे की कमी, उसका गम, सबको एक साथ पूरे घर को झिंझोड़ रहा है।
1: इसराइल ने जो हमला किया था पहला, उसके अंदर ये शहीद हो गए थे। कह रहे थे कि इंडिया में जो फिल्म्स होती हैं वो इनको पसंद थी और सलमान खान को ये पसंद करते थे। आप जानते हैं कि ईरान में जो फिल्म्स लगाई जाती हैं, जो यहाँ के टीवी पे लगाई जाती हैं, वो सेंसर करके लगाई जाती हैं, तो उसमें जो बुरे सीन्स होते हैं वो काट दिए जाते हैं और उसके बाद वो फिल्म भी चल जाती है। तो ये कह रही हैं कि सलमान खान को एज एन एक्टर वो पसंद करते थे।
0: हर लम्हा कोई नई चीज़ हो रही थी। कोई कह रहा था कि वॉर हो जाएगा, कोई कह रहा था ईरान जवाब का इंतज़ार कर रहा है। हम जहाँ थे टेंशन वॉर का बहुत ज़्यादा था, हमें किश्म की तरफ जाना था, लेकिन जब सुना किश्म पर हमला होने वाला है तब हमने अपना रास्ता बदल दिया और हम हुरमुज की तरफ निकल गए। हुरमुज इन दिनों सिर्फ एक जजीरा नहीं था, पूरी दुनिया की न्यूज़ का सेंट्रल पॉइंट था और पूरे इलाके का इंतज़ार था कि हुरमुज में क्या होने वाला है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जगह थी जहां हम जा रहे हैं।
2: ये जो हम लोग इस वक्त खड़े हैं ये हुरमुज है, जैसा मैंने आपको बताया वो ब्लू डॉट जो है हुरमुज का है। और यहां पर आप देखें कुछ कश्तियां हैं जो ऑलरेडी इन कश्तियों को रोका गया है और ये कश्तियां यहां से जब तक एक आइलैंड है और वो अभी फिलहाल क्योंकि वॉर सिचुएशन है इसके लिए उस रास्ते को और वहां तक को बंद किया गया है। और ये पहाड़ के पीछे अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको दुबई मिलेगा और ये वही एरिया है ओमान और ईरान के बीच का जो वाटरवे है जिसे स्ट्रेट ऑफ हुरमुज कहते हैं वो यही है। कहा जाता है कि बहुत खूबसूरत है ये पहाड़ जो है, कुछ वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर पूरा रेड वाटर होता है, यानी बहुत ही खूबसूरत जगह है। लोग आते हैं यहाँ पर और अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर भी करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ बच्चे आ रहे हैं फिशिंग करने के लिए। तो यानी जंग का माहौल ऐसा लग रहा है, हुरमुज है जंग का माहौल होगा, लेकिन आप देखेंगे तो जिंदगी नॉर्मल है क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है तो दुकानें बंद है, लेकिन बाइक्स देखेंगे आप चल रही है। ये बच्चे लोग यहाँ पर जमा है, बच्चे लोग जो है फिशिंग करने के लिए आए हैं और ये बच्चों ने ये माही निशुन में दी बच्चे सर माही निशुन में दी माही गिरफ्ती तो चीजी मैंने चजूर की। ये इन लोग जो दिखा रहे हैं कि इन लोगों ने यहाँ पर मछलियाँ पकड़ी हैं इसी समंदर से हुरमुज के अंदर, ये बच्चे जो यहाँ पर आए हैं और इन लोग जो है मछलियाँ यहाँ पकड़ रहे हैं। तो हम लोग एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह पर इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन अगर आप गौर करेंगे मैं क्योंकि यहाँ पर तकरीबन सुबह से आ गया हूँ, दोपहर से तकरीबन मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल है हुरमुज में। ऐसा लगता नहीं है कि जंग हो रही है या जंग की कोई बात है, जबकि अमेरिका ने बहुत थ्रेट किया है उसके बावजूद हुरमुज के लोग जो है यहाँ से छोड़ के जा नहीं रहे हैं। अगर इंजन इशू ये अगर आप देखेंगे तो देखें बाइक्स चल रही हैं। अभी जैसा मैंने कहा दोपहर का वक्त है तो यहाँ पर जो है ईरान में गर्मी ज़्यादा होती है तो दोपहर को 2 से 5 जो है सब चीज़ें बंद होती हैं, लोग घर पे जाते हैं, तो ये दोपहर का वक्त है।
0: आज की खबरों से बहुत पहले, कश्तियों और सैंक्शन से भी पहले, इन पानियों ने और भी कुव्वतें देखी हैं। पुर्तगीज सालों तक यहाँ खड़े रहे खलीज फ़ारस के दिल में, जहाँ हमेशा दुनिया के लिए अहमियत रही थी। यहाँ की मट्टी इस्तेकामत की याद भी रखती है, किले रह जाते हैं, कुव्वतें बदल जाती हैं, मगर ये पानी आज भी वही पानी है। और यहाँ के लोग सालों से सीख चुके हैं कि धमकियों के साए में कैसे

0: जब हमने बंदर अब्बास वापस जाने का फैसला किया, वक्त पहले जैसा नहीं चल रहा था। सब कुछ तेज़ हो गया, खबरें, बातें और वो रास्ते जिनसे गुजरना, लाफ्त में समंदर और रोड के दरमियान हम ऐसे सफ़र पर निकल पड़े जो पुरसकून नहीं था। यहाँ सफ़र सिर्फ मूवमेंट नहीं होता, यहाँ हर रास्ता खुद कहानी का हिस्सा होता है।
1: रहमान रहीम, हम लोग इस वक्त बंदर अब्बास आए हैं और बंदर अब्बास में यहाँ साहिल है, समंदर का किनारा है।

0: और ये समंदर के किनारे में आप देख सकते हैं कि उस तरफ हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। और अभी मुझे बात करनी है फारसी में, मैं जाऊंगा एक्सप्लेन करूंगा यहाँ के लोगों को हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के हालात के बारे में, कि लोग हिंदुस्तान के क्या इस वक्त सोच रहे हैं और ईरान को कितनी मोहब्बत करते हैं, क्यों मोहब्बत करते हैं, इसको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए।
1: 5 मिलियन मुसलमान जमीयत दर 2,205 मिलियन हमें आशिके शहीद रहबर आयतुल्लाह खामेनाई हस्तन सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद दर हिंदुस्तान शुमा शायद फिल्म दीदी के जनहा तलाय खुदशान का दादन बच्चा है गले खुदशान का आवर्दन दादन मर्दों में हिंदुस्तान दर ये महल्ले सुन्नी नशीन।
2: कभी कभी हम पहुंचते तो हैं लेकिन देर से, ऐसा नहीं होता कि कुछ हुआ नहीं बल्कि ये एक लम्हा हमसे पहले गुजर चुका होता है जहां हमने रिवायत देखनी थी मगर सिर्फ उसका निशान रह गया। शायद ये खालीपन ही असल हकीकत का हिस्सा है। हर चीज़ कैमरा के सामने नहीं होती, कुछ लम्हे जब हम पहुंचते हैं तो सिर्फ खामोशी होती है।
0: जो चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ का स्ट्रक्चर है बहुत इंडियन स्ट्रक्चर है और जैसे नज़र साहब कह रहे थे कि लखनऊ के जो इमाम लखनऊ में जो इमामबाड़ा है इमामबाड़ा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का उससे बहुत सिमिलर है। देखें ऊपर जो बिल्डिंग है वो वैसे ही है जैसे हमारे इंडिया में इमाम बारगाह वगैरह की बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसी तरीके की है। इसे हैदराबाद का हैदराबादियों ने उस ज़माने में बनाया।
2: एक छोटा सा स्टॉप, ठंडा सा वाटरमेलन और कुछ मिनट्स जहां लोग सिर्फ आम इंसान होते हैं, ना किसी बड़ी कहानी का हिस्सा। शायद यही छोटे लम्हे हर चीज़ को मीनिंग देते हैं। ज़िंदगी क्राइसिस के बीच कभी पूरी तरह रुकती नहीं।

कोई ये नहीं पूछेगा, ना कोई पूछता है कि भाई जब ये मरा था तो ये कपड़े कौन से पहना हुआ था, कोई नहीं पूछता। लोग तो ऐसे हैं कि बड़े बड़े शख्स की पहचान भूल जाते हैं, कोई भी नहीं पूछता ये सदर था, ये प्रेसिडेंट था, ये जो है वो कोई बड़ी पोस्ट पे था। कुछ डिपार्टमेंटों के तो उनका नाम लेने से भी डरता है कि वो चाहते हुए कि बाहर में ले जाएं। तो कोई इंसान इन्हीं के नाम ले सकते हैं जो कुछ नहीं कहते, इजारे मतलब खूब ये पोजीशन थी वो पोजीशन। लेकिन जब मरता है लोग क्या कहते हैं, मुर्दा है, मैयत है, जितने अलकाब थे खत्म। इसका मतलब क्या है कि ये सब मादा था और तुम पूरी जिंदगी इस मादे पे लगाते रहे, खत्म हो गई, नो आइडेंटिटी, मुर्दा है। हाथ लगाओगे गुस्ल वाजिब, यानी यहां शनाख्त छीनी खुदा ने, नजिस हो जाता है इंसान जब तक गुस्ल ना दिया जाए। ये हकीकत इस मादे की, उस पर हम चौड़े होके घूम रहे, खत्म ही नहीं होकर तेरी जिंदगी हमारी। हिसाब किसका होगा? हिसाब खुदा ये थोड़ी पूछेगा कि मरते वक्त कपड़े कौन से पहने थे, गाड़ी कौन सी थी, ना। कल्ब कैसा है? मौलाए मुत्तकियान मना जाते अमीरुल मोमिनीन मस्जिद कूफा में जो पढ़ी जाती है, और ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पढ़ें अपनी ज़िंदगी में, बहरहाल कभी भी उस मनाजात को पढ़ें। मौला खुदा की बारगाह में क्या कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका यौमा ला यन्फा परवरदिगार, मैं तेरी बारगाह में सवाल करता हूँ कि जिस दिन कोई चीज़ नफ़ा नहीं देगी सिवाय उसके जो कल्ब सलीम लेकर आएगा। तो यहाँ से एग्जिट कल्ब सलीम है, अब ये कल्ब सलीम ही का तो सारा गेम है कि इसको लेके कैसे जाना है, इसको बचाएं कैसे। यहाँ तो सुबह शाम मौत है, सुबह शाम डिस्ट्रक्शन है, और जिस ज़माने में हम जिंदा रह रहे हैं इस ज़माने की तो हालत यह है कि सुबह ईमान से घर से निकलेगा वापस बेईमान आएगा। हकीकत है ये। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल खुदा ने आखिरी ज़माने के बारे में अपने असाब के कहा कि एक ज़माना आएगा कि अमर बे मारूफ करना, यानी नेकी की तबलीग करना, नेकी के लिए कहना मुश्किल हो जाएगा, यानी आसान नहीं होगा। तो असाब ने कहा या रसूलल्लाह ऐसा ज़माना आएगा? तो कहा कि मुनकर को रोकना मुश्किल हो जाएगा, यानी नहीं है मुनकर करना मुश्किल हो जाएगा। कहा या रसूलल्लाह यानी ऐसा ज़माना आएगा? कहा मारूफ मुनकर जो है वो मारूफ में बदल जाएगा, यानी बुराई अच्छाई हो जाएगी। या रसूलल्लाह, और आज आपके सामने आप किसी को नसीहत करें, अब घर में आदमी नहीं कर सकता, बाहर तो दूर किया था अपने बच्चों को औलाद को, अब घर में करके देख लें आप नसीहत। और जो माशरा है उसमें बुराई करने वाला तो बड़े तरीके से बुराई भी करता है और दुनिया को बता भी रहा है, चोरी कर रहा है दुनिया के सामने, झूठ बोल रहा है दुनिया के सामने, बेहिजाब बेपर्दगी बेहूदगी माशरे में, ये तो अच्छा ही है। और उसी माशरे में रह रहे हैं आपके सामने, और कितना इंतज़ार करेंगे आखिरी ज़माने का। आज जो टीवी मीडिया में हो रहा है ना कि बाहर यहीं पे, बाहर तो छोड़ दें, यहाँ बुराई करने वाला खुरेआम खुशी से बुराई कर रहा है, कल्चर के नाम पर, सकावत के नाम पर माओ बहनों को जो है वो आप देखें किस तरह बेहजाब किया जा रहा है, बुराई कर रहा है, वो कह रहे हैं अच्छा काम कर रहा हूँ। ये ज़माना वही है जिसके लिए इतनी हदीस और रवायात है, इसमें कल्ब को बचाना बहुत मुश्किल है इंसान। और अगर खुदा इंसान पे करम ना करे इंसान नहीं बच सकता। तो यहाँ तीन तरह की चीज़ें, वक्त भरल बहुत तेज़ी से आगे की तरफ, इंसान मोहतरम परवरदिगार क़ुरान में मुख्तलिफ़ किस्सों को बयान करता है, तीन चीज़ें

टेंट आए उसको बेच रहा है। यार इंसान इंसानियत तो हो, मैं यहां पे खड़े होकर चलो बेच दूं, मुझे नहीं पता मालूम, वहीं पर पानी में लोग डूब रहे हैं, पूरा खैरपुर शहर डूब गया है, 80-80 घंटे बारिश हो रही है, कोई खौफ नहीं है किसी हुक्मरान को, कुछ नहीं है, हिल नहीं रहा कोई, अजाब नहीं आया तो क्या है जाने मोहतर, मुझे आप बताए। वहां बहरहाल आप कोशिश करें जितना आपसे हो सकता है जाने मोहतरम, यानी वाकई अपनी तरफ से तो कोशिश करें, और जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं काम कर रही हैं, आप उनके पेजेस पे जाएं, बहुत सारी हमारे अंदर हैं, मैसो है, ISO है, इमामिया है, JDC है, बहुत लोग काम कर रहे हैं आपके सामने, उनके सोशल मीडिया पेजेस हैं, उनके अकाउंट्स हैं, सब कुछ हैं, आप बहरहाल जितना हो सकता है डालें, अपने दस्तरखान के 10 दिन के खानों को एक खाना रख लें, एक खाना कम से कम एक को भिजवा दें, वहाँ लाखों का खाना डेली जा रहा है लेकिन लोग पूरे नहीं हो पा रहे, फिर उनके टेंट, फिर उनको घर बनाना। यज्द में भी ऐसी हालत हो गई, 3 दिन इतनी बारिश हुई कि जिंदगी मफलूज हो गई, लोगों ने ऊपर पनाह ले ली, काम ख़त्म। गुलाम रजा यजदी शख्स कहता है मैंने देखा कि रात को अपने घर के सहन में आया, अपना मामा उतारा और खुदा की बारगाह में हाथ फैलाए, परवरदिगार मैं इन यजदियों को जानता हूँ, ये हलाल लुकमे के लिए मेहनत करते हैं, ये अपनी औलाद को रिस्क हलाल खिलाने के लिए कोशिश करते हैं, परवरदिगार अगर इन पर अजाब किसी एक गुनाहगार की वजह से है तो वो गुनाहगार मैं हूँ। परवरदिगार तुझे इस एक गुनाहगार की वजह से इन पर अजाब ना डाल, तो इनको माफ़ कर दे। वो कहता है अभी ये दुआ मांग रहे थे बारिश ख़त्म हो गई, तो आदमी उस मकाम पे जाए बातिन देखता है खुदा, हमारे बातिन खराब हैं, हम जिस चीज़ को नोच रहे हैं दुनिया कुछ नहीं देगी, सिर्फ अफसोस और शर्मिंदगी है बस। बहरहाल कल अय्याम गुजरे, बहरहाल ये अय्याम वैसे भी कारवान लुटा हुआ शाम की तरफ रवा रवा है, बहरहाल में चंद दिन इमाम जो लोग कहते थे कि मौला आप इतना क्यों गिरिया करते हैं, तीस साल से ज़्यादा का अरसा बहुत होता है मौला, बस कर दें कितना रोएंगे। इमाम ने कहा, फरमाया कि हज़रत याकूब का एक यूसुफ खोया था, हज़रत याकूब जानते थे कि हज़रत यूसुफ ज़िंदा है, मगर क्योंकि दूर थे गिरिया इतना किया, आंखें सफ़ेद हो गई, मेरे सामने मेरे 18 यूसुफ कुर्बान हो गए। बाद उलमा ने पढ़ा करते थे, ज़बाने हाल है बहरहाल, कि रास्ते में जब असीर बना कर लेके जा रहे थे तो धूप की शिद्दतें इमाम के बदन को अज़ियत करती थी, अगर कोई साहिबान था तो ये 18 सर नेज़ों में थे। क्यों ना रोए सज्जाद जिसका साहिबान चचा भाइयों के सर हों, वो सज्जाद है सज्जाद। इमाम एक बागबान में गए, बाग में माली से पूछा कि गुलाब को कितना पानी देना पड़ता है, कहा मौला थोड़ा सा पानी है, गुलाब 2 दिन तक चल जाता है, उसको पानी की ज़रूरत इतनी, कहा मेरे बाबा के गुलाब को कितना पानी चाहिए, अली असगर गुलाब था ना,

मुरझा गया, पानी नहीं दिया है। कसाई जानवर को ज़िबह कर रहा है, मौला ने कहा इसको पानी पिलाया? हाँ मौला, हम मुसलमान है, ज़िबह से पहले पानी पिलाते हैं। मौला जमीन पे बैठ गए, कहा वो कैसे मुसलमान थे, मेरे बाबा को पानी नहीं पिलाया उन्होंने। खुदा आपको इसका अजर दे, आज़ादार हम लोग क्या रोएंगे जो सही लोग सज्जाद ने गिर गया। खाना लाते थे तो मौला रोते थे, पानी पिलाओ तो मौला रोते थे। हम मौला आप ज़मीन पे क्यों सोते हैं, आप बिस्तर पे क्यों नहीं सोते, ज़मीन पर आप लेटते हैं। कहा मेरे बाबा को भूखा और प्यासा मार दिया, मैं ज़मीन मैं आराम कैसे करूं। अज़ाद आरा ने मौत खूब ये सख्तियाँ इमाम की आप सुनते रहे, आजाम आयाम अज़ा के थे भारत में तो तबर्रुकन आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। इमाम के लिए सबसे सख्त गो के बाकी लोगों ने तो फिर करबला में अपनी शहादतें दे दी, मगर इमाम पूरे रास्ते शहीद होते रहे, पूरे रास्ते शहीद होते रहे। जब इमाम को जहर दिया, इमाम को गुस्ल कफन दे रहे थे, तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये आपके बाबा के कंधों पे निशान कैसे थे। इमाम खुद फरमाते हैं कि मेरे बाबा के गले में लोहे का तोप था, धूप सूरज की जब गर्मी पड़ती थी ना तो ये गर्म हो जाता है। इमाम ने एक दफा उमर इब्ने सात लाइन से कहा कि मुझे अमामे का कुछ कपड़ा काट के दे दो, कहा ये तोप अजियत करता है, कहा जैसे ही हटाया ताजा खून निकलना शुरू हो गया। तो ये सब सख्तियां इमाम करते रहे, मगर जब इमाम से पूछा कि सबसे सख्त क्या था, तो मौला कहते हैं हाय शाम, हाय शाम, हाय शाम। मौला शाम में ऐसा क्या हुआ? रावी कहता है मैं शाम में दाखिल हुआ, मैंने देखा लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने, ईद का समा है, लाखों की तादाद बयान होती है कि शाम के अंदर मेला लगा हुआ। उसने कहा कोई त्यौहार तो नहीं? पूछा ये क्या है? कहा कुछ बागी थे मारे गए और कुछ को असीर बना के लाया है। अज़दारा ने मोहतरम बस वो कहता है मैंने देखा, जब मैंने सर नेजे पर देखे तो मैंने कहा ये तो जाने पहचाने चेहरे हैं। मैं जैसे आगे जब मेरी इमाम को देखा, मैंने कहा मौला ये क्या हो गया? इमाम ने कहा कि कुछ पैसे हैं ये जिनके हाथों में नेजे हैं, इनको दो और इनसे कहो कि आगे की तरफ जाएं, ताकि लोगों की निगाहें मेरे अहले हरम पर ना पड़े। अल्लाह ने मोहतरम खूब यह इमाम के लिए बड़ा सख्त था कि गैर का मजमा और अली की बेटियां बेहजाब, अल्लाह अकबर। बस अल्लाह ने मोहतरम जब 13 मुहर्रम को इजाज़े इमामत से इमाम को बुलाया, इमाम आए, एक एक कर इमाम ने दफन किया सबको, लेकिन जैसे ही एक बदन पे पहुंचे कहा मैं अकेला दफनाऊंगा। अज़ादारा ने मोहतरम मकातिल कहते हैं कि इमाम ने अपने बाबा के बदन को उठाया नहीं, बल्कि एक बोरी रखी, अपने बाबा के बदन को समेटा, उठाया, करबला की सरजमीन में रखा, कहा तो कितनी खुशकिस्मत है, हुसैन इब्ने अली तुम्हारे दरमियान में है, कटी हुई रगे हैं, सर नहीं है कि रुए किबला किया जाए। इमाम ने मट्टी डाली है, फिर टूटी हुई नेजों और तीरों को